एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर 2026, प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साफ बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है।

0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से बोल रहे हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है चिंतन, विषय रहेगा रोशनी।

रोशनी, उजाला या प्रकाश, तीनों शब्दों का भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधेरे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं, मेरा, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और धरती पर उजाला होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।

श्रोताओं सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था रोशनी। आकाशवाणी जयपुर उज्जवल का यह अमीर चैनल है। ये जो प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहां सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे शंभू सेन बसाते कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।

कार्यक्रम वातायन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:20 पर। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे सुरेंद्र सिंह राठौड़ की से कुछ वार्ता।

दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे ठीक सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:45 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:10 पर और सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात हमारा वारा सब किसान भाई ने बोने ने इना बेनो राम राम राम राम। किसान भाइयों, देखो आ हवा नो टेम है ने आना हवा ना टेम में आपणे जी खेतरो नो काम काज है ई करवो पड़े। पण खास करीने अभी आ जी खरीफ मक्का है एने में माजर वगैरह आवी रे थका है, सीपा लई रे थका है, सीपा में जी दाणा है भराई रे थका है। किसान भाई ने खरीफ मक्का में पानी नी जरूरत है। जण किसान भाई ने भाई आज बोर वगैरह कीधा थका है ई जरा पानी नो हिस्सो है करी दे, क्योंकि भाई आ बारिश तो अभी थई नती रही। सीपा लई रे थक है अणी अवस्था में जरूर पानी पाई दे ताकि आपरे फसल में कमी नहीं आवी जाए, क्योंकि आपरे एटलो हार हमार हांगरू कीधु थको है, एटला मोगा भाव वालू बीज लावे ने बुआई करी है, खातर सब कीधु है। पण हवे पानी पावानो जे सीपा वगैरह लई रे थको है ने वखत पानी नहीं आवी रो है, केम के आ 2-3-4 दाड़ा में अगर पानी आवी गयो तो ठीक, नहीं तो पछी आपरे जे फसल है ई जराक नुकसान थी जाएगा, दाणा ने भरेगा, एवी समस्या आवी जाए। तो किमने किसान भाई आपणे फसल ने बसावा हारू आपणे पाणी नी व्यवस्था जरूर करे, पाणी नो हिस्सो करे। बीजू किसान भाईओ, आपणे आज भी फसल है खरीफ मक्का है, सोयाबीन वगैरह है, एने बाद दलहनी फसल है। दलहनी फसल में तो हजू घेर पानी नी वधारे जरूरत नहीं रहती, पर मक्का में रहे ने आ फसल हवे धीरे धीरे करीने आपणे थई रही थकी है। तो आना समय में किसान भाईओ आपणे फसल ने देखरेख करवी घणी जरूरी है। मैं तो पस आ पहले बुआई कर दीदी थी अणा ने सीपो वगैरह पोकड़ा वगैरह थई रह थके हैं, तो आना समय में आपणे फसल नो वधार करीने नुकसान थई जाए। एक तो आ पाणी रोकाई गयो है तो एने भी नुकसान थई रह थको है, ने बीजो आ सीपो लई लेदा है दाणा भराई रह थका है मय मय, तो ई जंगली जानवर है हियार है कूतर है एवो सीपो नो वगाड़ो करी रह थके है। तो जराक आपणो फसल नो ध्यान देखरेख हाजी हवा ना टेम में जरूर राखे ताकि आपणी फसल है ये सुरक्षित रह सके। किसान भाईओ, देखो हाज ने या हवा ना टेम में जी भी भड़ाकानी आवाज है या कोई तगार कूटवानी आवाज है, ईवी आवाज जराक खेतर ने हेड़े जाने करी दीदी तो जी भी जंगली जानवर है हियार कूतर है ई हेड़ा थकी नहीं जाएगा। जराक हाजना टेम में भी आना खेतर में रखवारी राखवी घनी जरूरी है, क्योंकि आपणे घर में जी भी मानवी है ई हाजने वक्त भाई या बैटरी वगैरह लाइट ले ने हेड़े हेड़े फरी ले ताकि हाजने वक्त जी आपणे फसल है नुकसान नहीं थी जाए, फसल नो वगाड़ो नहीं थी जाए। अणी वात नो विशेष करीने किसान भाई ध्यान राखे। हालांकि किसान भाई है बेने है हर वाने जी फसल नी है देखरेख करी रह थका है, पण हवे थाता समय में अगर आपणे जराक चूक राखी दीधी भूल राखी दीधी तो वधारे नुकसान थी जाए। किसान भाईओ आणी वात नो ध्यान राखवू है। एने बाद आपणे किसान भाई में शाक सब्जी वगैरह कीधी थकी है एने भी पाणी वगैरह है आलतो रहे, जिने बोर कीधा थका है आई पाए तराव है तो मोटर नाके ने डंकी थकी ई जी सब्जियां है फसल है एने में पाणी पाई दे ताकि आपणी फसल है ई हुकाई नहीं जाए। बीजू किसान भाई आपणे खास करीने पशु वगैरह भी है तो पशु वगैरह ने भी ध्यान जरूर राखे, क्योंकि आपणे तो किसान भाई है खेती ने पशु आपणे एना बेस आधार है आपणे किसान भाई ने, तो खेती ने हाथी हाथी किसान भाई पशु नो भी जरूर ध्यान राखे। दुधारू पशु है आणा ने हार हमार करे ने जी भी पौष्टिक आहार वाटो वगैरह है ई दुधारू पशु ने जरूर आले ने आणा चोमासा ने दाड़ा में पशु नो जी बांधवानो वेड है वा खरी साफ सफाई जरूर राखे, निम्न तेमनो दूध वगैरह आपणे काढा तो एने वखत भी केम के आना समय में मक्खी वगैरह है ई वधार थई जाए तो दूध काढे एने वखत जरूर ध्यान राखे मक्खी है इमने दूध में नहीं पड़ी जाए। एने बाद आपणे जी बछड़ो वगैरह है एने पर्याप्त मात्रा में दूध राखे ताकि बछड़ू है भूखो नहीं रही जाए, केम के किसान भाई आपणे हांगरो दूध काढ़ी ला

0: एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: संत बड़े

0: उस गीत के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राठौर से वार्ता। वार्ता का विषय है शिक्षा संस्कार एवं अनुशासन।
1: भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कार सनातन काल से ही समृद्ध रहे हैं, किंतु बढ़ती जनसंख्या, छोटे होते परिवार एवं आज की आवश्यकताओं ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित कर रखा है। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता और विद्या को हासिल करने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा बच्चे ज्ञान, अनुभव, कौशल और स्वस्थ दृष्टिकोण हासिल करते हैं। अर्थात शिक्षा से हमारा तात्पर्य है बालक में अंतर्निहित सर्वांगीण शक्तियों को बाहर निकालकर विकसित करना। आधुनिक युग में उत्तम शिक्षा एवं संस्कार के लिए प्रारंभिक बाल विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा गर्भ से लेकर स्कूल में प्रवेश की उम्र तक अपने विकास की पूर्ण क्षमता पा सके। आज की आवश्यकताएं प्राचीन काल से भिन्न हैं। आज हर विषय क्रिया प्रधान हो गया है। प्रतियोगी समय के इस दौर में माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अधिक चिंता करते नजर आते हैं कि उनके बच्चे को कौन सी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए, कौन सा शिक्षा बोर्ड उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा आदि आदि। मिट्टी में पानी भरकर हम पी नहीं सकते, लेकिन इसी मिट्टी का बर्तन बनाया जाए तो उसमें रखा जल पिया जा सकता है। मिट्टी से बर्तन तुरंत नहीं बनता, बर्तन बनाने के लिए कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। हमारे बच्चे भी मिट्टी के जैसे हैं। यदि उन्हें समाज और राष्ट्र के लिए पात्र बनाना है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया का नाम है शिक्षा व संस्कार प्रक्रिया। संस्कार शब्द का अर्थ है सम्यक आकार, संस्कार अर्थात शुद्धिकरण, संस्कार मतलब अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और अच्छा रहन सहन। संस्कार के द्वारा बालक में अभीष्ट गुणों का जन्म दिया जाता है। बालक के व्यक्तित्व को योग्य आकार में ढालने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार। बच्चे का विद्या संस्कार पढ़ाई शुरू करने से पहले किया जाता है और समावर्तन संस्कार, जो कि हिंदुओं का 12वां संस्कार है, गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्वारा विदाई दी जाती है। संज्ञात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास पूरी क्षमता से हो सके इसके लिए उनके जीवन के शुरुआती वर्ष का समय महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है और वह माँ के स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण से प्रभावित होता है। जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास और तेजी से होता है, जो बच्चे की शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक बेहतरी, सीखने की क्षमता और बाद में वयस्क होने पर उसकी उपार्जन की क्षमता तथा जीवन में सफलता निर्धारित करता है। शिक्षा वह सतत प्रक्रिया है जो प्रतिपल परिवर्तन लाती है ताकि बालक में श्रेष्ठता का जन्म हो सके। संसार में बच्चे का

जन्म सीखने और कुछ कर गुजरने की भावना के साथ होता है। जिस प्रकार एक नन्हे पौधे में फलने फूलने की समस्त संभावनाएं छिपी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों में भी सभी मानवीय गुण मूल रूप से समाविष्ट रहते हैं। घर एवं स्कूल में अनुकूल वातावरण मिलने पर उसकी सृजनात्मक प्रवृत्ति, स्वावलंबी बनने की प्रबल आकांक्षाओं और स्वयं को उपयोगी सिद्ध करने की प्रयत्नशीलता सुविकसित होती है और सक्रियता भी बढ़ती है। प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास जन्मजात शक्तियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है, किंतु वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। संक्षेप में शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायित्व घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर सांस्कृतिक तथा सभ्यता को पुनर्जीवित करने की लिए प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। यह बालक में निहित योग्यताएं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में अपना योगदान प्रदान करता है। समय समय पर बाल्यावस्था में माता द्वारा बालक को सुनाई गई कथा, कहानियां, उपदेश, दिया गया ज्ञान बच्चों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ता है। बचपन में दिया गया ज्ञान ही संपूर्ण जीवन में उसका मार्गदर्शन करता है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और माता पिता कुम्हार की तरह सहारा देकर सही आकार में ढालते हैं। माता पिता पर निर्भर करता है कि बच्चों को किस रूप में ढालें। जितनी मेहनत बच्चों के साथ करेंगे बच्चे उतने ही अच्छे विकसित होंगे। माता पिता बच्चों की जैसी परवरिश करेंगे, संस्कार देंगे, बच्चों का भविष्य भी वैसा ही निखरेगा। शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन का आधार है। शिक्षा यदि स्तंभ है तो संस्कार सद्गुण सुख की खान है। शिक्षा बालक के जीवन का अनमोल उपहार है जो बालक के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। और संस्कार जीवन का सार है जिसके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। जब बालक में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होगा तभी वह परिवार, समाज और देश के विकास में सहयोग प्रदान कर पाएगा। विद्यालय स्तर पर ऐसी गतिविधि का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञाकारिता, विनयशीलता, सहानुभूति, सहयोग, समन्वय आदि गुणों का विकास हो सके। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि कक्षा पहली से पांचवी तक के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की पुस्तक का भी संकलन हो ताकि शिक्षक उन्हें नियमित रूप से नैतिक ज्ञान की शिक्षा दे सकें। अनुशासन व्यक्ति की प्रतिबद्धता, समर्पण व ईमानदारी का प्रतीक होता है। इसकी नींव बचपन से पढ़नी चाहिए। बाल्यावस्था में अनुशासन के संस्कारों का बीजारोपण होना आवश्यक है। अगर बचपन में बच्चों के अच्छे संस्कार दिए गए हैं तो वह पूरे जीवन उसके साथ रहते हैं और वह चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाता। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक निष्ठा, चरित्र एवं अनुशासन की अधिक आवश्यकता है। शिक्षा में राष्ट्रीय भावना, अनुशासन, चिंतनशील गंभीर नागरिक तैयार करने का संकल्प होना चाहिए। किसी भी समाज और देश में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है।
उस समाज और देश का

0: भविष्य इसी बात पर निर्भर होता है कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस किया जाए। खासकर युवा पीढ़ी को क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है।
1: इस वार्ता के साथ ही कार्यक्रम वातायन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है मन मंदिर और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और खयाम का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम है शगुन। तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये गाना।

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है गाइड।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय

0: के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अब आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मॉनसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: अपडेट रहे आगे रहे एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण

0: ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। यह रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
2: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का यह टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
4: भोपाल, ग्वालियर चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से

0: सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
2: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिरैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूं हीना जैन, आपकी दोस्त और रेडियो होस्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बारिश का नाम सुनते ही मन में कितनी सारी तस्वीरें उभर आती है ना। आसमान पर छाए काले बादल, खिड़की पर गिरती बूंदे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर चमकती हरियाली और कहीं दूर से आती गर्मा गर्म चाय की खुशबू। बारिश सिर्फ आसमान से गिरती बूंदों का नाम नहीं है, बारिश तो एक एहसास है। किसी के लिए बचपन की याद का, किसी के लिए प्रेम की पहली कहानी, किसी के लिए मिट्टी की खुशबू, तो किसी के लिए एकांत में खुद से मिलने का बहाना। और शायद इसलिए बारिश की हर बूंद कुछ कहती हुई सी लगती है। तो आइए दोस्तों, आज इन बूंदों की आवाज सुनते हैं, बारिश की खुशबू को महसूस करते हैं और जिंदगी के कुछ खूबसूरत रंगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम कुछ दिल से के सबसे पहले गीत में सुनते हैं बारिश की ये मस्ती। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, बारिश केवल खूबसूरत नहीं होती, वो एक शिक्षक भी है। वो हमें सिखाती है कि गिरना बुरा नहीं है। देखिए ना, बादल आसमान से गिरते हैं, बूंदे जमीन पर गिरती हैं, लेकिन उनके गिरने से धरती खिल उठती है। ठीक वैसे ही हम भी जिंदगी में गिर सकते हैं, कभी असफल हो सकते हैं, तब कोई सपना टूट सकता है, कभी कोई रिश्ता छूट सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हरियाली हमारे सबसे कठिन समय के बाद आती है। मुश्किल जिंदगी में बारिश की तरह होती है, थोड़ी देर बरसती है, लेकिन उसके बाद आसमान पहले से ज्यादा साफ दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी कठिनाई आए तो यही जीवन है ये मानकर मत बैठ जाइए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा।

मुझसे बारिश आती है तो लगता है जैसे आसमान धरती से मिलने आया हो। सूखी धरती की प्यास बुझती है, पेड़ों की पत्तियां नहा उठती है, फूलों में नई चमक आ जाती है और हवा में एक नई ताजगी भर जाती है। बारिश जिसे अपने साथ बहार लेकर आती है, ताजगी, ठंडापन, हवाएं, कुदरत जिसे झूमने लगता है। बारिश हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी सूखी क्यों न लगे, एक दिन नींद की बूंदे उसे फिर से हरा कर सकती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी आज कुछ सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है तो घबराइए मत, हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता।

दोस्तों, बारिश का सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद हमारे बचपन से होता है। वो बारिश में भीगना, कागज की नाव बनाकर उसे पानी में तैराना, गली में जमा पानी देखकर खुश हो जाना, स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो खुशी से झूम उठना, घर पहुंचते ही माँ की आवाज सुनना, कितनी बार कहा है बारिश में मत भीगा करो, लेकिन फिर बेस आवाज को नजरअंदाज करते हुए बारिश में खूब भीगना। समय बीत जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बारिश आज भी हमारे अंदर के उस बच्चे को जगा देती है।

वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी, वो बेफिक्र बचपन, वो नादान कहानी। वक्त आगे बढ़ गया पर यादें वहीं ठहर गई। कुछ बारिश उम्र नहीं, बस बचपन लेकर आती है। तो आइए बारिश में भीगते हुए, नाचते हुए सुनते हैं ये मधुर सा गीत।

वैसे बारिश और प्रेम का रिश्ता बहुत पुराना है। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो दिल थोड़ा ज्यादा महसूस करने लगता है, किसी की याद आती है, किसी का साथ अच्छा लगता है और किसी के साथ चाय पीने का मन करता है, और कभी कभी बस खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते रहने का मन करता है। कभी बारिश दो लोगों के बीच की दूरी कम कर देती है तो कभी दूर बैठे किसी अपने की याद और गहरी कर देती है। लेकिन प्रेम सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं होता, प्रेम बारिश से भी हो सकता है, मिट्टी से भी, प्रकृति से भी, और उस जिंदगी से भी जो हमें हर दिन एक नया मौका देती है। बारिश की बूंदें जब खिड़की पर आती हैं, कुछ भूली हुई बातें याद दिलाती हैं। किसी की कमी महसूस होती है कभी तो कभी किसी की मुस्कान दिल में उतर जाती है। तो आइए दोस्तों, इन बातों के साथ सुनते हैं बारिश में भीगता हुआ एक रोमांटिक सा गीत।

दोस्तों, हमारी बातें और इस गीत के साथ पता ही नहीं चला कि कब वक्त पूरा होने चला। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब अगले पल बारिश हो, कुछ पल रुकिएगा, खिड़की खोलकर बूंदों को महसूस कीजिएगा, किसी पुराने गीत को सुनिएगा, किसी अपने को याद कीजिएगा और खुद से एक बात जरूर कहिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी धूप आए, मुझे अपनी उम्मीद की बारिश कभी खत्म नहीं होने देनी है। इन्हीं बातों के साथ मैं हिना जैन लेती हूँ आप सभी से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 93.3 MHz पर। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: इसी के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया जारी, नाम वापसी का आज अंतिम दिन। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय

0: निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में दो दिनों तक हुई गहन चर्चा की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रहनी चाहिए बल्कि लगातार समीक्षा और अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कल आवंटित किए जाएंगे। इधर चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ईवीएम की रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। जयपुर में चुनाव ड्यूटी के प्रशिक्षण से अनुपस्थित 9 कार्मिकों को 17 CCA के तहत चार्जशीट दी गई है। वहीं डीडवाना कुचामन में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने बताया कि ईवीएम रेंडमाइजेशन से मशीनों का निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित होगा।
2: रेंडमाइजेशन में जो ईवीएम है इसको हमने नगर निकाय वाइज हमने पिछवेट कर दिया है। टोटल जिले में 399 ईवीएम दी गई है, वो तो बूथ की जो संख्या है उससे 15% एक्स्ट्रा है। हर निकाय में हमने 15% का रिजर्व रखा है इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से। कुल 399 जो है हमारी ईवीएम है वो नगर निकाय को आयोजित दी गई है, जिसकी अब धीरे जैसे ही हमने की है उनकी संख्या भी ईवीएम का नंबर भी कंसर्न अधिकारियों को दे दिया है और उस पर सभी से साइन भी करवाया। अब अधिकारी जो है उसको अपने पोजीशन में लेंगे और उसको प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश जयपुर में पीएमजी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, सरकारी भूमि हस्तांतरण और राइट ऑफ वे से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचने के लिए लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने ये निर्देश जयपुर में पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था केवल मेलों तक सीमित नहीं रहे बल्कि साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर की जाए। बैठक में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, रामदेवराव और

0: पुष्कर सहित प्रमुख स्थलों पर भीड़ के अनुरूप पुलिस बल और पर्यटक सहायता बल तैनात करने को कहा गया। डीजीपी ने पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने, अधिक सीसीटीवी लगाने और पर्यटक सहायता बूथों पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। राज्य में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। जयपुर के प्रमुख मंदिरों में सजावट, रोशनी और झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के आयोजन होंगे। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि प्रशासन ने भी जन्माष्टमी को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
1: जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर 4 और 5 को मनाया जाएंगे, शोभा यात्रा भी होगी। ये हमारे गोविंदेव जी मंदिर है, इस्कॉन की मंदिर है और अन्य जो मंदिरों में काफी हद तक जो दर्शनार्थियों की भीड़ और रह सकता है, इसके लिए हमने पूर्ण प्रबंधन कर चुके हैं। मंदिर प्रबंधन के साथ साथ पुलिस के साथ साथ और सर अन्य डिपार्टमेंट के साथ की व्यवस्था हमने जायजा ले चुके हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई करनी है उस कार्य को हमने संपूर्ण कर लिया है। सभी व्यवस्था माकूल है। जहां पे शोभा यात्रा निकलेगी वहां पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था और दर्शनार्थी को जो जल्दी से व्यवस्था हो जाए दर्शन की, उसके लिए भी व्यवस्था हमने कर चुके हैं।
0: प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान रैलियां, कार्यशालाएं, क्विज, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया कैंपेन जैसी गतिविधियां होंगी। कल जयपुर में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में ये जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव और प्राधिकरण की अध्यक्ष गायत्री राठौर ने बैठक में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि इससे जुड़ी सेवाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो। बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्थायी पंजीकरण की व्यवस्था आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। संभाग स्तर पर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। बैठक में बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए संचालित टेली मानस हेल्पलाइन पर अब तक 1,11,377 कॉल प्राप्त हुई है। इनमें 95,305 कॉल लोगों ने स्वयं की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया जारी, नाम वापसी का आज अंतिम दिन। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे

हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली और आशा भोसले की कुछ गजलें।

तो समय क्या देता, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं।

0: हम खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
0: ग्राम मंगला मटिया बालू से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मुहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
0: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
0: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
0: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: निमेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है?
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
0: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ बिमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: बिमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा अजीत जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
0: जी
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल जी हाँ श्रोताओं।

0: एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया।
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
5: जो मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। इस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और

0: रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तब मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा, मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
1: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
2: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
3: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
4: 2 मैं शरद हूँ।
5: और मैं सुचित्रा हूँ।
4: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
5: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
4: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स स्कॉट मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
5: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
4: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
6: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूँ, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
7: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
6: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
7: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
6: ना जाने क्या होगा इसका।
7: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
6: अरे वो सब तो ठीक है, पर
7: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
5: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।

0: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
0: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
2: कैसा प्रयोग?
0: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
1: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
0: संभव तो है भाई, संभव है।
2: अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ।
0: इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
1: अच्छा
2: अच्छा,

0: ट्रांसमीटर।
1: अच्छा
0: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
2: अच्छा।
0: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
0: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
3: हाँ हाँ,
0: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
3: हाँ हाँ, भेजो जल्दी भेजो।
4: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात
3: है, वाह, क्या क्या बात है।
4: अरे ये तो जादू की तरह लगता है, इसको वाह क्या बात है। अरे वाह,
0: सिग्नल मिला?
4: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत, शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
5: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
6: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
5: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़े कड़ाके की ठंड है। हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
3: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
2: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
3: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
2: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
3: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
2: देखता हूँ।
3: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
2: ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved the world.

0: वाह, रेडियो पर आदमी की आवाज,
1: अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
0: वाह, क्या बात है।
1: पहली बार सुना है ऐसा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
3: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
2: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
3: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
2: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
1: ये क्यों हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
4: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डेक की ओर भागो।
5: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
4: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
1: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है। डेक पर कितनी बड़ी कटान पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर रहा है। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेल्ड।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
1: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, और हेड लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्पैच,
6: जल्दी जल्दी करो।
1: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट के नीचे उतारो।
2: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
3: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
2: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
3: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा।

0: इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
1: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे न कोई वैज्ञानिक थे और न ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You're really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार के ये काम करने वाला रेडियो विश्वास नहीं होगा। विश्वास
3: नहीं होगा। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
6: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
6: धन्यवाद।

0: 30 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है जब

0: आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहां थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना।
1: जी।
0: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से
1: जी,
0: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
0: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है, और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
0: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते
0: से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई
1: जी।
0: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी
1: जी, जी।
0: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी। एक दफा
1: शरद जी यानी आपके पतिदेव?
0: जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
1: क्या बात।
0: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है।
0: जी, इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी।
1: जो तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
1: और
0: थे,
1: ऑर्डर देके भरवाते थे। हाँ, ये वाला गाना,
0: अगर लिस्ट
1: वाला
0: होती थी एक छोटे से। हाँ, तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी, हाँ, और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो वो गाना सुनवा दीजिए
1: जी।

0: सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी। और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहां से सीखा और कहां से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ एक फुट का होता था, वो बहुत बड़ा नहीं होता था। तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे
0: जी।
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं
0: जी।
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी
0: जी।
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पर अपने आप से निकालना शुरू किया
0: जी।
1: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया
0: जी। तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे। बताइए कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहां से प्रेरणा मिली?
1: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है
0: जी।
1: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा
0: जी जी।
1: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे
0: जी,
1: और जिस जगह हम रहते थे वहां पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, तो हमारे मम्मी, मेरी माँ नर्स रही है, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों एक बात और

0: बता दूं कि मेरी माँ नर्स रही और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों सम्मानित भी हुई।
1: क्या बात है भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाबूजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी जी।
0: और उसके थोड़े समय बाद बाबूजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाबूजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देव की नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे
1: जी,
0: तो ये पत्रिका हमारी आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
1: जी जी।
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी और हम
1: साप्ताहिक हिन्दुस्तान में भी,
0: साप्ताहिक हिन्दुस्तान, तो हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे क्या हुआ।
1: क्या बात।
0: तो मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ। वहां ये बीज पढ़ा और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती है।
1: जी जी।
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारी का भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा।
1: जी जी।
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्रीराम ताम्रकर सर
1: जी,
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगे? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो वहां से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसी तुकबंदी की तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया। तो बस वो एक कच्चा, कच्ची एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहां चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहां से शुरू हो गई थी।
1: जी, जी। तो वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापिस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काट की।
0: हाँ जी।
1: तो
0: हाँ जी।
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काट की का जिक्र किया है।
1: हाँ हाँ।
0: तो दुनिया काट की का विचार ऐसे मन में आया। हाँ। कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई।
1: हाँ हाँ।
0: और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा।
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौन था कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी
1: जी,
0: और
1: जी।
0: जिसने सहारा दिया, संभाला, वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है।
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए। तो जब यादों को टटोलने लगी, अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काट की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी का प्रयोग होता है, तो जन्म से मृत्यु।
0: हाँ जी। मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको
1: जी,
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है।
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है, लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह क्या बात है, बहुत
0: बढ़िया। लकड़ी का पलना ऐसा होता है।
1: जी, जी बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: गीत

0: देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था।
1: जी जी।
0: तो वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा है।
1: क्या बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
1: क्या बात है।
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो।
1: हमराज जी। फिल्म का ये गाना। हाँ जी। सुनते हैं। जी।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है
1: जी।
0: तो इसके बारे में बताइए, क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं, देखिए फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहां की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है।
0: अच्छा।
1: और विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए, तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है। लेकिन नजर बट्टू की जहां तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहां पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहां पर वो पढ़ाती हैं। तो वहां की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे
0: जी।
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नजर बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नजर बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानी है उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नजर बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नजर बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नजर बट्टू यानी कि जो नजर से बचा है वो, तो जो नजर बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: गाड़ी में,
1: तो गाड़ियों में
0: स्कूटर पर।
1: ये बात अलग है कि उनसे ब्रेक नहीं लगता लेकिन एक आस्था होती है इसलिए वो नजर बट्टू गाड़ी पर टंगाया जाता है। खेतों में किसान
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नजर बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नजर बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नजर बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च के की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी।
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नजर बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नजर बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी
1: है? वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है, किताबें तोहफे में देना।
1: हाँ।
0: और सबको ये सीखना चाहिए कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे
1: हाँ।
0: में दे।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज और बताती हूँ, जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी। वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची 2 या 3 पुस्तकें थी कुल
0: जी।
1: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
0: क्या बात है
1: जी,
0: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और बहुत बढ़िया,
1: धन्यवाद।
0: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है,
0: कहानी है।
1: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे।

0: खूब सरप्राइज दिए।
1: हम्म,
0: तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी।
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई।
0: हाँ जी। माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी।
0: बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है
0: जी।
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह हैं।
0: जी जी।
1: इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी है? और दरअसल कविता संग्रह आए, ये भी बताइए।
0: मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी जी।
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है पूरा दीजिए ना।
1: क्या बात है,
0: है ना, सारा आकाश।
1: हाँ।
0: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी,
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल।
1: जी जी।
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी।
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली। उसने कहा गुन्नी हो। मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा। उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो।
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या मेरा कुछ नहीं।
1: जी।
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा जा पूरा क्षितिज तेरा। जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी,
1: जी
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो जरूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसे सब। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाजत लेना पड़ती है। मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो
0: जी।
1: और लेखन चूंकि मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं होती। मेरा जो लेखन का वक्त है वो दोपहर का है।
0: अच्छा जी।
1: कभी कभी सुबह भी होता है। ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज आई कि मुझे ये लिखना है तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है। कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर,
1: तो आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए।
0: वाह क्या बात है
1: जी। और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे एकांत नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती हूँ।
0: तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई, वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफी

0: समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उससे जाके पीसीओ से, एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे हमारे घर के बाजू में रहने आइए। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया।
1: होली के दिन
0: प्रपोज किया। रंगे पूते थे बिल्कुल, और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग एक महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
1: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते हैं। आपकी जहां तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, शब्द साधिका सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
0: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन है
1: जी।
0: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी, गौरव की बात थी। यात्राओं के वृतांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है
1: जी।
0: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक्के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
1: बढ़िया।
0: तो जब हम यात्रा वृतांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृतांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितनी भी कठिन यात्राएं हम कर चुके
1: जी जी,
0: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे, इसके अलावा जो हमारी प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं
1: जी,
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
0: मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा
1: जी।
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में, और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट, जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुवाड़ी बोलते थे उसको मालवा में
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था
0: जी जी।
1: एक छोटा सा समझ लीजिए सिर्फ एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी
0: जी।
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे। तो कोई भाभी, चाची, काकी, मामी, बुआ जी, मामी जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आजा, तू भी आजा, तू भी आजा मांडनो बनाई ले, मांडवी बोली में बोलते तुम्हारे, आजा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया कटोरी में लेके बैठ जाती थी खड़िया, और उनकी देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था
0: जी जी,
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था। तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली।

0: कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चांदनी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी। तो वो क्या थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना, तो चूंकि शरद जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं, तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडले बनाए वो करीब 300

0: दिया, कभी किताब कभी मानना, ऐसा
1: जी
0: हस्तलिखित या हाथ की चीज का की वैल्यू अलग होती है, उसके वो अनमोल होती है दरअसल।
1: अब लघु कथाओं की बात करते हैं, लघु कथाएं भी आपने लिखी हैं और संग्रह आए, कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
0: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है।
1: जी जी
0: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियां होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियां बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी जी
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ, तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए, तो काफी समय से लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा अभी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊ मैं।
1: जी
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे, जीवन की शांति बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे, उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों की परवरिश उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या इसी दिन के लिए, उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने सुनाई।
0: लघु कथा की विशेषता ही यह है कि उसके अंत में एक पंच होता है।
1: जी जी जी
0: और वो पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में बहुत तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है, स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं, किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं
1: जी,
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ
1: जी,
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी
1: जी,
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है, मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी,
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है
1: जी।
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है
1: जी,
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल, हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताब

0: किताबें आपकी आ गई हैं
1: जी,
0: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
1: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु
0: जी।
1: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है, तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी। मतलब देखिए समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों फेंका? तो ये बीज हो गया। अब इसको विस्तार देकर के कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा।
0: अच्छा,
1: ऊपर से निकल जा भाई,
0: जल्दी है तो।
1: लेकिन वहाँ उस 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर।
0: क्या बात है,
1: है ना? तो इस तरह से विषय कब आ जाते हैं। और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास। और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
0: जी जी।
1: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: जी जी।
1: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी।
0: वाह।
1: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
1: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली कविता सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन अब तो, विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ट की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काट की किताब से ली है
0: जी।
1: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ, कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
0: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
1: जी,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है, कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा। पिटारा, पिटारा, पिटारा।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इन बालोरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोमेश कुमार की आवाज में गाई कुछ गजलें।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म डेढ़ इश्किया से। गीत को गाया है रेखा भारद्वाज।

डेली सिक्स से लिया एक गीत आप सुन रहे थे जिसकी धुन बनाई थी एआर रहमान ने और गीत को गाया था मिश्रित आवाजों ने। फिर संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पहेली से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज गुलजार की बोल।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म फुलौरी से। गीत को गाया था रोमी वामी पांडे ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रावण से। नंदनी श्रीकर की आवाज और विशाल शेखर का संगीत निर्देशन।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का वह ही चैनल है। दोपहर के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई क्षेत्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रूपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक

सत्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जोड़ी के, प्यारे लाल जी के साथ। आज उनका जन्मदिन है तो विविध भारती परिवार और आप सभी सुनने वालों की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और इस खुशी के मौके पर हम सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

साथियों, आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की, फिल्म का नाम है आसपास।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला गीत गा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।
1: हंसो मत, बोलो

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इल वालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, लता मंगेशकर को सुनिए इस गीत में जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है आशा, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आग और शोला।

0: जिन्हें इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
3: मेरे हीरो,
4: ये क्या करती?
3: मेरे जानो,
4: ये तो डर लगती है।
3: मेरे बाला,
4: तेरा भाई हमको मारती।
3: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
4: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
3: तूने क्यों मुझे बचाया?
4: बस अपना फर्ज निभाया।
3: क्या तू कुछ भी कर जाता?

0: कर जाती?
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
0: अच्छा अच्छा, कर जाता
1: मेरे लिए मर जाता।
0: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड,

0: आचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालोरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है अकेला।

छवाया फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोरी पकड़ी गई ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुर्गे से बोली मुर्गी, तोते से बोली मैना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। उनका मजाक ठहरा, मेरी तो जान गई ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल के

जीन है तू, लड़की है या है जादू, हे गोरा गोरा मुखड़ा ये काल काल नैना, हे गोरा गोरा मुखड़ा ये काल काल नैना, मुझे आज कुछ न

کنوارا مشکل ہے اب گزارا اب تک ہوں میں

जियो रहना, मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना, मुझे आज

कार्यक्रम यादों की महफिल में आज हमने सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनिए बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एग्रीमेंट परमानेंट हो गया फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया। पतरे की है मोटर का जानवर सी नहीं वफादार। मरते दम तक चले टमटम तो रुत रंगीन हो जाती है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। सबकी जुबां पर मेरी कहानी मुश्किल है यूं मुझको फंसाना। अरे पगला है कोई उसको बताना वो क्या है मैं कौन हूँ ये जान चुकी हूँ मैं। उसको अपने साथ ही लाना कि दिल ही नहीं लगता। वो रोए तो राजेंद्र हंसे तो जितेंद्र हर हीरो की खूबी उसके अंदर। मुझको ये इशारा मिला है कि तूफान है जैसे किनारा मिला है। तेरी नजर पे ही ये मेरी नजर है कि तूने बिठाया है मुझ पे पहरा। आया है जोगी बनके लुटेरा। प्यार की कीमत किसने अदा की जब कभी होंगी बातें वफा की। सबकी जुबा पर होंगी अपनी कहानियां। अब याद में तेरी कट जाएंगे जीवन के दिन चार। खुश रहना मेरे यार। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश। सुरीला सफर का इवेंट है ये इबारत नहीं अरेंजमेंट है। श्रोतागण भी प्रेजेंट है अनोखा कंटेंट है। गाने सभी इबारत में ही साइलेंट है। संगीत में सफर में उपस्थित रहने का हमारा भी कमिटमेंट है। आज की कहानी इंसानियत की पहचान कराती है। जो ईमानदार होता है वो वफादार होता है और वही परेशान होता है। घोड़ा हाथी की हालत कैसी होती है जब जरूरत होती है तब तक रखते हैं उसके बाद मोटर ट्रैक्टर जैसे वाहन काम आते हैं।

किसी ने ये मैसेज लिखा है कि वैसे तो मुझे सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुली का एक्सीडेंट हो गया वाला गीत मुझे पसंद है। एक्टर अमिताभ बच्चन इस गीत में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और ये अगला कमेंट है कि आज की इबारत में वो गीत जो फिल्मों में पक्षियों, जानवरों, सांपों पे फिल्माए गए गीत हैं, जानवरों का फिल्मों में काम देखकर दर्शक बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। फिल्म नागिन, निगाहें, सूरज और चंदा में सांप पे फिल्माए गए दृश्य बहुत पसंद किए गए। सफेद हाथी, हाथी मेरे साथी, माँ जैसी फिल्मों में हाथी का काम देखने लायक था। और तो और फिल्मों में तेरी मेहरबानियां में तो डॉगी ने कमाल का काम किया था, ऐसे लगा कि फिल्म का असली हीरो तो वही है। ये अगला मैसेज है कि आज की इबारत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका भावनात्मक मोड़ है। चंचलता और ठिठोली से शुरू हुआ ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसमें गंभीर रुमानी, इकरार और वफा, दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुंचते पहुंचते ये अल्लड़ दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी? अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप। अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लैब्राडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूं, पढ़ती हूं और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरपुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे एसएच बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूँ। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था। और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतजार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

फुल फुल छैया मुखड़े पे धूप है।

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15

अगस्त 1975 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन और डायलॉग था चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है और यूं के हमें बेफिजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे होली कब है होली।

अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफर का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ है। हम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानियां का गीत सुन मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय में करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं जोर जोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, फिल्मों में जानवरों के रोल की बात हो और नाग नागिन की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में सस्पेंस और बदले के लिए सांपों का खूब इस्तेमाल हुआ। रीनो रॉय और श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाकर बड़ा तहलका मचाया था। जंगल में शिकार के दौरान कुछ दोस्तों ने एक नाग को मार डाला था। कौन से अभिनेता थे उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें। जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहां जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं

हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है, और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी, लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाक के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे और दूत का अर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नाग नागिन में नजर आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

और अब बात होगी इस गाने की, जिसका नागिन डांस सभी शादियों में किया जाता है। एक इच्छाधारी नागिन खलनायक से अपना बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खलनायक घर आकर अपनी बीन बजाते हुए तांत्रिक शक्तियों से ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है कि रजनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अंत में नाटकीय संघर्ष होता है जिसमें बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। तो जल्दी से बताइए कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम क्या था, और ये भी बताइए कि क्या आपने नागिन डांस किया है, जरूर बताइए। और इस फिल्म का पार्ट टू भी तो आया था, क्या नाम था उसका? और गीतकार है इस गीत के आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ और दूसरी फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों जीव जंतुओं पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन नागमणि नाग पंचमी निगाहें नगीना नागिन पुरानी नागिन नई आई मिलन की रात नाचे नागिन गली गली दूध का कर्ज नाग देवी ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा विविध भारती के चाहने वालों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमैक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। होली, अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक, फिल्म का नाम है मर्द।

वाला है मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

तेरे ही है मोटर का, जानवर से नहीं वफादार। पतरे की है मोटर का, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे तम, मर के तम तक चले गए तम तम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोदी की है सच्चे का हूँ। मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।

रहमान मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

0: क्षमा क्यों परेशान है, अपनी किस्मत से हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत से हैरान है। तो दो दिल की बहार नानक दुखिया तपलता, क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती मैं सचेता मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त।
1: साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माता जी की भूमिका में नजर आई थी वही

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ।

0: রাধা
1: রাধে শ্যাম
0: ও সীতারাম
1: রাধে শ্যাম
0: ও সীতারাম।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

मौसम के अनुसार अपने स्थानीय इलाके में मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति से साथ बैठकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। परिवार के साथ खाने से रिश्तों में मजबूती, प्यार और अपनापन बढ़ता है। दिन भर की थकान मिटती है और मानसिक शांति मिलती है।

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और

0: क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रेंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री टियो फ्रेंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय

0: संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
2: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
3: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंजरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी न कोई संदेह
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है खिलौना।

0: आचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान।
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इल बालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: Haley. सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है।
0: वो तो लग रहा है
1: जी।
0: आज क्या खाया था तुमने नाश्ते में?
1: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
0: पोहा? और लंच में?
1: लंच में खाया है मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया और साथ में दही।
0: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
1: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
0: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें अंकुरित जो होते हैं, चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के बहुत अच्छा सा बन जाता है।
0: क्या
1: खाने में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों में पोषण सप्ताह मना भी तो रहे हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते।
1: बिल्कुल। वो ग्लो जो होता है ना, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं
0: होती है कि हम बड़े ब्रांड के पाउडर, क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जाके, खासतौर से महिलाएं। जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत तो सामने आ ही जाती है। आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर है तो वो आपका चेहरा बता देता है।
1: बिल्कुल बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
0: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती है।
1: बिल्कुल। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एकदम सही बना रहता है।
0: हाँ,
1: तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें ध्यान देना चाहिए
1: जी। क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक, मतलब बहुत इस बाहर की चीजें खाते हैं तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की से बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एकदम पीला पड़ा सा चेहरा या हमारा वेट बढ़ जाता है। जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लगे हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लगे हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए, रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं, और अपने बच्चों को, घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के विषय क्या है ये भी लगे हाथ तो बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
1: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सुझाव भेजिए, और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज।

0: मोलू सुमति जो कि कला क्षेत्र में है और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है
1: क्या?
0: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास वही ना कि आपने ये बीज खा लिया अब तो बस पेड़ निकलेगा क्योंकि पानी तो हम पी ही रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है तो अब ये बीज
1: पेड़ निकलेगा और हम सच्ची मान भी लेते डर भी जाते थे या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत कहां ले गया है ना तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे एक अंधविश्वास की ना हमारा दांत कोई ले न जाए चूहा तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा या
0: आप बताते हैं
1: अपने बच्चों को है ना
0: जी तो बताइए हमें और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं
1: रसोई को चमकाने में मतलब
0: हमारी रसोई चमकती रहे ना एकदम बढ़िया रहे एकदम साफ सुथरी रहे उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं
1: बिल्कुल कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरी
0: तो आप हमें अपने सुझाव भेजिए आप क्या करते हैं अपनी रसोई को चमकाने के लिए
1: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं
0: है
1: ना आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है तो आप अपने घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं ये हमें बता सकती हैं
0: बिल्कुल
1: और अब हम क्या कर सकते हैं
0: एक गीत सुन सकते हैं

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में।
1: बिल्कुल, खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात में आपको कह रही होगी ना, खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज, और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी
1: बना के लाओ।

0: ये आपके लिए।
1: हाँ, चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की कि पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खासतौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल। तो जहां अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही हैं हमेशा, तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा फल हैं, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। रंग बिरंगे फल, सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो वो नानुकुर भी करते हैं,
0: बहुत ज्यादा
1: पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
0: बिल्कुल। और किसी विषय जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है।
1: हाँ।
0: किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि जूस हो गए, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर, कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
0: पता ही नहीं चलता है,
1: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान।
0: हाँ।
1: तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय, चीनी डाल
0: एकदम, कुछ लोग एकदम
1: पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए, कभी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
0: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
1: हाँ बिल्कुल। आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
0: बिल्कुल। आपके पेट में गुड़गुड़
1: होने लग जाती है और कई बार पता है हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरी सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं। लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी
0: या सिर में दर्द हो जाएगा।
1: सिर में दर्द हो जाएगा। तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से टहले है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
0: बिल्कुल, और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धि

0: का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्ग को वो खाना दे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दे, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दे ताकि जो बुजुर्ग है उसे आराम से खा सके।
0: बिल्कुल,
1: और
0: गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
1: कड़ी नहीं होगी। आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे, जब वो खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये लें, साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं, पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें, और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद, क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग है थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
0: बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें
1: लिखकर।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे, कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
1: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
0: हाँ, बिल्कुल लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें, प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाए, है ना। चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ, वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहां सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
0: अच्छा, ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। सोचते लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
1: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
1: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खाने में, और ध्यान दें कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा कुछ टेस्टी।

0: वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध फल फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी, बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
1: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
0: सब कुछ अच्छा लगता है,
1: सब कुछ अच्छा लगता है। अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा हो दे भी सब बेकार लगता है।
0: बिल्कुल, और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
1: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
0: बिल्कुल।

0: हाथों आरती जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई देता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनके, निदुमोलू सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं निदुमोलू सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार है और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती
0: हैं। क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरू में।
0: सबसे बड़ी बात। और देखिए ना, मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को देखा है, हाँ। है ना, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर, कैसे मृदंग बजा,
0: गजब गजब। तो जब निदुमोलू सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, निदुमोलू राघवैया और निदुमोलू वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है। उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया था।
1: बहुत
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिसे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तोता के रूप में स्थापित हो गई। निदुमोलू सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपनी प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुभा लक्ष्मी, डॉ एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और लेते हैं एक अंतराल।
1: बात

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो बताए उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब बेकार पड़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मांझता है।
1: बिल्कुल,
0: तब जाकर वो एक अच्छा
1: तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्राज्ञी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निरमोलू समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
0: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल अवार्ड और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलू सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
1: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
0: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: संगीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत है ना। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हम
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखा है, सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में, जो हमें सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है, अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा,
1: सच में वो डर रहता है,
0: तो अंकित हो जाते थे इस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: बिल्कुल, कोई ना कोई आएगा पकड़ लेगा अगर सो नहीं
0: तो। तो वो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे, बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: पीठ के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में, सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख है ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे, किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में रखा।
1: पीली पड़ जाती थी उसको, अच्छा लगता था देखने।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो

0: फौरन नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ
1: है ऐसा होता था ना,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की
1: ये जरूर पूछा जाता था। हाँ, कौन सा फड़की
0: है, डर के मारे पता क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और
0: दांत दे देगी। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े हो गए, सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं।
0: बिल्कुल, कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू छिपकली छींक रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सब के भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे, ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है,
0: तुम्हारा छींको दूसरी छींक, अरे दो छींक आइए अब निकलो, है ना, कितना
1: बहुत सारी चीज है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज मैंने भी करी, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसलिए टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था, अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते थे उठा क्यों भाई, वो बिल्कुल बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरी आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी,
1: गिलहरी हमें पकड़ में कभी नहीं आता।
0: हमें लगता काश ही 25 पैसे दे दे हमको, काश ही 25 पैसे दे दे हमको।
1: तो और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो

0: या पांच फल का नाम ले लो या पांच उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे।
1: बहुत बढ़िया, सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही दो मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ पहले हम लोग मिले तभी उसे एक मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में दो मैना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
1: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1/4 sorrow, और दो जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2/4 joy।
0: हाँ।
1: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा। हाँ। कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही है, और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
0: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से,
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं। हाँ। जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बना

0: जहाँ हाँ। हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती हूँ अपनी रसोई को साफ सुथरा।
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग है आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक बिक्स की किचन टीप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुने, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श है उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते जो बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक लिखते हैं, बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें तो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही है और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर की, शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांज लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक
0: है। बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही है और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा
1: रखे और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: प्यारा सा।

0: आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलियन रख दूं। और पता है गुलमोहर का क्या होता है? गुलियनी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है। यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिसमें चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं, और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता एक खुशहाली रंग और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर, मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से? भाई मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो?

0: कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जीदा अपने दिलवर से होने लगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं मैडम।
0: नाम आपका?
1: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी बताइए, क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मैडम।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जन फिल्म का गाना।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम,
0: ठीक है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम मंगला काशियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में बताइए।
1: हमारा गांव तो देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए, गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले।
0: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा, बताइए। फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने, और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही है इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: पानी कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा।
0: जी तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती है निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते हैं तो बर्तन में ये टप में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट में बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता है, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो गुस्सा आती फिर ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही, थोड़ी जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने की बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे जीवन में।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट है वारंगाफाटा, तालुका कलमपुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हारे को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
0: जी जी जरूर,
1: खिचड़ी का।
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल
1: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी, तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है। है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए।
1: नाश्ते में खिचड़ी मिलती है और बटेर मिलता है
0: तो बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
1: नहीं नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: होटल है, होटल है।
0: अच्छा,
1: वारंगाफाटा में होटल है।
0: क्या बात है, अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगाफाटा जाने का। वैसे
1: भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का, महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी है खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ

0: आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर है, जो भाई प्रोग्राम चलता है ना, तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी।
0: और अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो, सैर करो।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल। तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अक्सर बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओ
1: मैडम, मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपने के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम। वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: सब किस्मत बदल दे। और देखो, मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी जी बिल्कुल,
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा, वाह।
1: फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो बात खास होनी होगी एक दिन रात को जरा सी बात पे, मैं बिना बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा।
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मारते हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर कह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये आपने अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी है धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्में देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम, मैंने बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत।
0: क्या बात है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर कौन से बोल रहे हो मैडम जी?
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ। देखिए मैं पूरी धरती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: अब बताइए क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी बिल्कुल। मैं ट्रेनिंग स्टाफ है, मेरा कर्जा रायपुर में मोहन जय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलते सब करते रहते हैं और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ में सब काम करते रहते हैं और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं और उस आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह तो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते रात को 11 बजे बंद होता है। टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिये मैडम जी, इस समय देखिये मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप पूरी भारतीय परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप
1: बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नक्षत्र जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने। कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, और उसका बोल है, मच्छी गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी रजिका बाका संभाल तेरी गजेरी रे,
2: मच्छ

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी। खलील जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कही का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईंट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे।
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी, और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये वहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो खास हो गया ना आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने लिखने
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है,
1: यहाँ पर एसएससी या इंटरमीडिएट जब एग्जाम होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मजबूत, तेरे दिल के पास ही है मेरी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको निमिषोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गाम के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।

0: नॉर्मल।
1: तो आपका क्या काम है?
0: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।
1: वहाँ पर खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
0: पैदावार तो बहुत अच्छी है यहाँ। इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
1: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
0: यहाँ पे? ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
0: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ,
1: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
0: वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है
1: जी। तो बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए आपकी पसंद का?
0: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे रिकॉर्ड है कोई भी सुनाइए।
1: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: सहयोग सौरभ घारू का विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर ले 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युवाणी। 7 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

7:30 पर दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बाय बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण यह आप ट्रांसमीटर पर जुड़े श्रोता सुनेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता हमारे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोताओं और स्थानीय एफएम ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोताओं के लिए 8:45 पर दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगे समाचार संध्या।

लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता सुनेंगे 9 बजे विविध भारती के कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत, 11 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार साथ में जीरे की चिट्ठी और कुछ विज्ञापन के साथ आप सुनेंगे 6:28 पर जयपुर अजमेर केंद्र से।

एक नजर कल की प्रातःकालीन सभा की तरफ। रामचरितमानस गान 6:30 पर, खेती में बात 6:45 पर, लोक भजन का समय रहेगा 6:50 पर। वातायन आप सुनेंगे 7:20 पर, कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनाएंगे 8:15 पर, राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 9:30 पर आप सुन पाएंगे, सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे 9:00, 11:00 भी आप सुन सकते हैं, फिल्म संगीत 11:30 पर। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से प्रातः 6:00, समाचार प्रभात 8:00, हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 9:00।

विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र सीआर सुन रहेंगे 7:30 पर। 10 बजे दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न किया।

खामोशी से मेहनत करो, शोर सफलता खुद करेगी। आज की ठोकर ही कल तुम्हारी उड़ान बनेगी। वक्त चाहे जितना आजमाए, हिम्मत मत हारना, क्योंकि असली जीत उसी की है जो आखिरी दम तक लड़ता है। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपकी दोस्त अरुणा यादव, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस पर। दोस्तों, आज के समय में हमारा देश और पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे आसपास ही दिखाई देता है। हमारे आसपास दिखाई देने वाली बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स, पहले के समय में लोग छोटे बिल्डिंग या छोटे घरों में रहते थे, लेकिन आजकल शहरों में जगह की कमी और बढ़ती आबादी के कारण गगनचुंबी इमारतों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं ऊंची इमारतों के महत्व को समझने के लिए गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं हम। गगनचुंबी इमारत का मतलब ऐसी बहुत ऊंची इमारत से जिसमें कई सारी मंजिलें होती हैं। ये इमारतें देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। इनमें घर, ऑफिस, होटल, दुकानें और कई सारी दूसरी सुविधाएं भी हो सकती हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में ऐसे बिल्डिंग्स आम देखने को मिल जाती है। मुंबई और दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों में

0: एसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आज शहरों में जमीन कम होती जा रही है और लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कम जमीन पर ज्यादा लोगों को रहने और काम करने की व्यवस्था करने के लिए ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो कि काफी यूजफुल भी है। एक ही बिल्डिंग में कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं जहां कई सारी फैमिलीज रह सकती हैं, कई सारी कंपनियों के ऑफिस भी होते हैं। इससे कम जमीन का ज्यादा और सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, चलिए सुनते हैं संदेश और एक प्यारा सा गीत।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों ब्रेक के बाद अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। दोस्तों भारत त्योहारों का देश है, यहाँ अलग अलग धर्मों और त्योहारों को बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनके जन्म की खुशी मनाते हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब आधी रात का समय था। उसके बाद जन्म के बाद वसुदेव उन्हें गोकुल ले गए। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया के पास में छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने दोस्तों अपना बचपन गोकुल में बिताया। वे बचपन में बहुत नटखट थे और उन्हें माखन बहुत पसंद था, इसी वजह से उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार दोस्तों पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाते हैं। बहुत से लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। रात को मंदिरों में भजन और कीर्तन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सुंदर कपड़े पहनाकर झूले में बिठाया जाता है। उसके बाद रात के समय 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। इस समय मंदिरों में घंटियां बजाई जाती है और लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद दोस्तों सभी को प्रसाद दिया जाता है। कई जगह पर श्री कृष्ण से जुड़ी, जीवन से जुड़ी सुंदर झांकियां भी निकाली जाती है। जन्माष्टमी पर दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण को बचपन में माखन और दही बहुत ज्यादा पसंद था, इसी वजह से जुड़ी दही हांडी की परंपरा आज भी कई जगहों पर मनाई जाती है। एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे फोड़ते हैं। इस कार्यक्रम में लोगों का उत्साह और खुशी देखने के लायक होती है। आज के समय में भी जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। यह त्योहार हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। इस दिन परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा की तरह तैयार किया जाता है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि दोस्तों श्री कृष्ण की कहानी आज के समय में

हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, बहुत प्रेरणादायक भी है, क्योंकि कई बार हम छोटी सी परेशानी आने पर परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ मुश्किल है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल हो, अगर हमारा फैसला मजबूत है तो हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय भी जरूर आता है। दोस्तों, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद अब हम बात करते हैं शिक्षक दिवस पर। दोस्तों, भारत में शिक्षक का स्थान हमेशा से बहुत ही खास रहा है। शिक्षक सिर्फ हमें किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जिंदगी में कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। इसी वजह से हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह दिन हमारे शिक्षकों के प्रति सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और अच्छा मौका होता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का एक खास कारण है, इस दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे एक महान शिक्षक और विद्वान थे। जब उनका विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें दोस्तों, तो हमारे माता पिता के बाद शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। एक शिक्षक हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि किताब में क्या है, बल्कि वह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो शिक्षक हमें दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार हमें लगता है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई और होमवर्क के लिए डांटते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि उनकी डांट के पीछे हमारी भलाई छिपी होती है। वे हमारी गलतियां बताते हैं ताकि हम उसे सुधार सकें और आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सकें। मेरे हिसाब से तो एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि वह अपने विद्यार्थियों की क्षमता को पहचानता है। कई बार एक बच्चा खुद पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन शिक्षक उसमें वह काबिलियत देख लेता है जो शायद कि उसे खुद भी दिखाई नहीं देती। एक शिक्षक का छोटा सा विश्वास किसी विद्यार्थी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। शिक्षक दिवस

तो हमें यह याद दिलाता है कि सफलता के पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती बल्कि उन लोगों का भी योगदान होता है जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। हमारे शिक्षक हमें सिखाते हैं कि हार जाने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि हार जाने के बाद कोशिश छोड़ देना गलत है। उनकी यही बात हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आज के समय में शिक्षा का तरीका जरूर बदल गया है। पढ़ाई के लिए इंटरनेट और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शिक्षक की जगह दोस्तों कोई भी नहीं ले सकता क्योंकि मशीन हमें जानकारी दे सकती है लेकिन सही और गलत में फर्क समझाने वाला एक अच्छा शिक्षक ही होता है। दोस्तों हमारी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का और कार्यक्रम युववाणी को समाप्त करने का है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, आपकी दोस्त अरुणा यादव के साथ। नमस्कार।

0: करुणा यादव से अभी आपने युववाणी कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 5:30 का समय होने वाला है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने, बस कुछ ही पलों में।

सागर फिल्म के इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अगला गीत हम सुनते हैं छिछोरे फिल्म का, जिसे स्वर दिया है तुषार जोशी ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन प्रीतम की।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं
1: बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फिल्म दम लगा के हईशा के गीत को कुमार सानू और साधना सरगम ने स्वर दिया था। गीतकार थे वरुण ग्रोवर और संगीतकार थे अनु मलिक।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वीवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार

0: रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्वेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग। आइए सुनते हैं दो पदन फिल्म का गीत, स्वर आशा भोसले की, गीतकार हैं शकील बदायूनी और धुन आनंद बख्शी की।

अभी आपने जो गीत सुना दो बदन फिल्म से हमने लिया था, आवाज आशा भोसले की थी, गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे रवि।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: कभी छोड़ दे मेरा साथ
0: फिर न कभी।

अभी आपने अजनबी फिल्म का एक गीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

0: यादों की बारात इस फिल्म का अभी आपने गीत सुना। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, धुन राहुल देव बर्मन की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर

0: स्टार्स के बाद संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले
0: जो संगीत

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बागबान से। अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, आदेश श्रीवास्तव और हेमा सरदेसाई की आवाजों में समीर के बोल हैं और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।
4: It's Valentine's Day.

अगला गीत सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से, फिल्म कयामत से कयामत तक का स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण के, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर और कल आज रात के शेष कार्यक्रम और कल
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने आज नई दिल्ली में विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। इन एमओयू में नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में देश ने 7.8% जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है। उन्होंने भारत और बेल्जियम के संबंधों को दीर्घकालिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को दोनों देशों की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को गति मिलेगी।
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री श्री वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश तथा वैश्विक ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और भारत दुनिया की सबसे खुली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। 10,245 वार्डों के लिए होने वाले इन चुनावों में कुल 8,457 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसके साथ ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन वार्डों के लिए अब 34,719 उम्मीदवार मैदान में हैं। 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए जोर लगाया। वहीं कई सीटों पर असंतुष्ट निर्दलियों ने पर्चे वापस लेकर अधिकृत प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। 30 वार्डो में निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं कई वार्डो में बागी उम्मीदवार और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी सीधे तौर पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की

0: दोस्ती के जरिए बैठक ली। जयपुर में हुई इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने मतदान दलों की रवानगी, मतगणना केंद्रों और वोटों की गिनती की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहते हुए सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण करने को कहा। प्रदेश में होने वाले इन चुनावों के लिए 49 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों को 14 सितंबर तक संबंधित जिलों में रहकर चुनाव प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करनी होगी।
1: जिनको जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो ये लोग जो है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार जिलों में रहेंगे और जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है ये पूरी निगरानी रखेंगे, और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में वो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे और जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराएंगे, और उनके माध्यम से जो है हम पूरी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव आज जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बैंकों को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बैंकर्स से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। देश में जीडीपी दर 7.8% रहने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की, साथ ही उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बैंकों के प्रदर्शन की सराहना की।
2: ये देखा गया कि अभी हाल ही में जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ के नंबर्स आए, जो 7.8% ग्रोथ रेट दिखा है, और जीएसटी टैक्स कलेक्शंस में भी लगभग 2 लाख करोड़ का इस महीने में टैक्स कलेक्शंस दिखे। इस प्रकार से इकोनॉमी में जो बोयंसी दिख रहा है वही बोयंसी बैंकिंग परफॉर्मेंस में भी आज मुझे नजर आया है, और खास करके जो राजस्थान में जो प्रमुख बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा।
0: राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा फिशिंग लिंक के जरिए निजी और बैंकिंग जानकारी चोरी करने की आशंका के मद्देनजर लोगों को सतर्क किया है। साइबर ठग फिशिंग लिंक के माध्यम से मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को वायरस भेजकर संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद उपकरण पर नियंत्रण हासिल कर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना नेट बैंकिंग संबंधी विवरण और संवेदनशील जानकारी चोरी की जा सकती है। साइबर अपराध के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ताओं को ई स्कैन, सीईआरटी इनबॉट रिमूवल ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये ऐप मोबाइल में मौजूद बॉट, मॉलवेयर, ट्रोजन और अन्य साइबर अपराधों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करता है। उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप पर दो स्तरीय सत्यापन सक्रिय रखने का आग्रह किया है। और अब मौसम। प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
3: अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। 4, 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले 1 सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को आत्मसात

0: याद करते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव को सुदृढ़ करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर घर घर में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर उल्लास देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं और तड़के ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र भरतपुर के बाजारों में भी खासी रौनक छाई हुई है। श्रद्धालु सुंदर पोशाकों के साथ श्रृंगार और पूजन भोग सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। उधर डीग के कामवन में भी नंदोत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल से कामा उत्सव की भी शुरुआत होगी।
1: इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु कामवन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी विशेष झांकियां, मंगला आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
0: लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली चूरू जिले के ददरेवा में लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। उधर हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में भी मेलार्थियों की आवक बनी हुई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए यह अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये लाइसेंस 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। जिले में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों, प्रशासनिक समीक्षा, विभिन्न जागरूकता, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियां हुई। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आगे बढ़ी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2026 का कार्यक्रम पिछले दिनों घोषित किया। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इस बीच मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचारों के जरिए लोगों में मतदान के प्रति सजगता लाई जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों, गांव के चौपालों और अन्य स्थानों पर रैलियों, संगोष्ठियों और प्रतियोगिता के माध्यम से वोट का महत्व बताया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के साथ ही चुनावी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी जारी है। निर्वाचन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही ईवीएम रैंडमाइजेशन का काम भी जारी है। मतदान प्रक्रिया के सफल और सुचारू संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण पिछले दिनों टीएडी सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को ईवीएम की कार्यप्रणाली, मतदान प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और मतदान केंद्र पर की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी

0: अजीत यादव ने गढ़ी परतापुर क्षेत्र का दौरा कर नगर निकाय चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए निर्वाचन कार्य को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपादित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छोटी सरवन उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा ने ग्राम पंचायत कटुंगू में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री अभियान का पिछले दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पंचायत भवन, विकास कार्यों, राजस्व रिकॉर्ड और राजकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों जैसे नाली निर्माण, सड़क मरम्मत और सामुदायिक भवन की गुणवत्ता की जांच की। गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों जैसे स्वाइन फ्लू, सामान्य बुखार और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रसार की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने जिले में जांच, उपचार और बचाव गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। गंभीर रोगियों और उच्च जोखिम समूहों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों के तहत जिले में राहत और बचाव व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित हुई। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखा गया कि आपात स्थिति सामने आने पर राहत और बचाव दल किस तरह काम करेंगे और अलग अलग विभागों के बीच किस तरह का समन्वय रहेगा। अभ्यास के दौरान उपलब्ध संसाधनों और बचाव व्यवस्था की भी जांच की गई। धार्मिक गतिविधियों की बात करें तो पूरे सावन माह में जिला शिवमय रहा। भगवान भोलेनाथ की जयकारों के साथ शिव मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और शिवजी की पूजा अर्चना की। सावन के चारों सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया और मनोकामनाएं मांगी। वनेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जिले भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर कुशलबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पर्वत सिंह चुंडावत ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जिले में कई गतिविधियां हुई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर और पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और बेल्जियम आपका 5 साल में कारोबार दोनों करण माथे राजी भया। दोनों देशों बीच आज नई दिल्ली में हाथ बांटा करार माथे सही करी जी। प्रदेश का 309 नगरीय निकायों में होने वाला चुनाव सरु 34,719 उम्मीदवार मैदान में आए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास साइबर अपराधनी रोकथाम सरु बैंका ने जागरूकता कार्यक्रम चलावन बाबत कहो। प्रदेश में बारिश ऊजू तेज में बन रहा आसार, काल 19 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, भारत और बेल्जियम आज नई दिल्ली में न्यारा करार मथ सही किन्नी। आमाय नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण समेत न्यारा हलकाओं जुड़िया करार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम रा प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर बीच भी बातचीत दौरान दोनों देश आवता 5 साल में एक दूजा सागे कारोबार दूनों करण मथे राजी भया। ये पाछे राखी जा भिड़ा संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी कहो के दुनिया में उथल पुथल रा दौर रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था री रफ्तार बनेवड़ी है। प्रधानमंत्री कहो के चालू माली साल रा पहला 3 महीना में भारत जीडीपी में बढ़ोतरी री 7.8% री रेट हासिल कीनी। वह कहो के भारत रे आगे बढ़वारी कहानी दुनिया सारू भरोसा और नुआ मौका रो स्रोत बन रही है। वह भारत और बेल्जियम रा रिश्ता ने लंबा बगत तक चलने वाला बताता था का कहो के

0: दोनों देशों विच लाडला 10 साल माए भागीदारी खूब बढ़ी है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: इमोके बेल्जियम रा प्रधानमंत्री वेबर भारत न सब मोटो लोकतंत्र और तेजी बढ़ती माली व्यवस्था बताता था का दुनिया की मोटी ताकत बतायो। प्रदेश में 9 और 11 सितंबर नवेमन वाला निकाय चुनाव सारू आज नाम पाछा लेवन रो आखिरी दिन हो। 10,245 वार्ड अनुसार वेमन वाला इन चुनाव में 8,457 उम्मीदवार पर्चा पाछा ले लेना। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब आम वार्डन सारू अब 34,719 उम्मीदवार मैदान में है। 309 नगरीय निकाय में 10 नगर निगम 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिका में शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास सियासी पार्टियां रा नेता आप अपरा बागी उम्मीदवार रिमान मनोबल में लाग गया है। कई सीटा में थे नाराज निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा पाछा लेर अधिकृत उम्मीदवार ने हिमायत करण रॉयलान की न है। 30 वार्डा माए उम्मीदवार सगड़ा ने राय चुनिचिया। कई वार्डा माए बागी और तीजा मोर्चा रा उम्मीदवार चुनावी समीकरण में थे असर डाल सके है। नाम वापसी रो काम पूरो फिर पाछे अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ बाला क्यों है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह नगरीय निकाय चुनाव सारू तैनात करी जिया पर्यवेक्षका ने स्वतंत्र निपक्ष और साफ कोई सागर चुनाव करावन सारू जरूरी दिशा निर्देश दीना है। वे आज पर्यवेक्षका सागर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग में बोल रहा है। श्री सिंह पर्यवेक्षका ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सावचेत रहता थका लगातार निगरानी रखने का हुक्म दीना। वे पोलिंग पार्टियां की रवानगी वोटा की गिनती रा केन्द्र और गिनती की तैयारियां बारे में ही जानकारी लीनी। राज्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आदर्श आचार संहिता रा उल्लंघन में जुड़ी शिकायतों और निपटारो 24 घंटा की मियाद में करने का हुक्म दीना। प्रदेश में हुवन वाला स्थानीय निकाय चुनाव सारू 49 पर्यवेक्षक तैनात करी चिया है। खबर नवी संसा के बातचीत करता था कांशी सिंह कहो कि पर्यवेक्षक 14 सितंबर ताई संबंधित जिला में रहर चुनाव प्रक्रिया री निगरानी करेला।
2: जिनको जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो ये लोग जो है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार जिलों में रहेंगे और जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है ये पूरी निगरानी रखेंगे और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में वो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे और जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराएंगे और उनके माध्यम से जो है हम पूरी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बत्ती जनता ताई बैंकिंग सेवारो फायदो पोगावन सारू बैंका ने गांवाई हलका ताई पहुंच बधावन सारू कहो है। वे आज जयपुर में राखी जी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति री मीटिंग में बोल रहा है। मुख्य सचिव बैंका ने साइबर अपराधानी रोकथाम सारू जागरूकता कार्यक्रम चलावन बाबत कहो। वे बैंक वालाओं सरकारी योजनाओं ने असरदार तरीका में लागू करण रा काम में सक्रिय भूमिका निभावण और ग्राहका ने बेहतर और बैंकिंग सुविधा टेम सर मुहैया करावण में थे जोर दीनो।
3: ये देखा गया कि अभी हाल ही में जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ के नंबर्स आए जो 7.8% ग्रोथ रेट दिखा है और जीएसटी टैक्स कलेक्शंस में भी लगभग 2 लाख करोड़ का इस महीने में टैक्स कलेक्शंस दिखे। इस प्रकार से इकोनॉमी में जो बोयंसी दिख रहा है वही बोयंसी बैंकिंग पर परफॉर्मेंस में भी आज मुझे नजर आया है और खास करके जो राजस्थान में जो प्रमुख बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा।

0: पुलिसरा मुजब साइबर ठग फिशिंग लिंक रे जरिए मोबाइल कंप्यूटर और दूजा साजो सामान ने वायरस भेजर खराब करते हुए है। ई पाछे साजो सामान माथा खुद काबू कर और आपकी जानकारी बगैर नेट बैंकिंग जुड़ी और संवेदनशील जानकारी चोरी कर ले हुए है। साइबर अपराध माथे काबू करण रो काम देख रहे अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह एंड्रॉइड मोबाइल फोन काम लेवन वाला ने ई स्कैन सीईआरटी इनबोट रिमूवल ऐप काम लेवन दी राय दीनी है। वो ऐप मोबाइल फोन में मौजूद बॉट मॉलवेयर ट्रोजन और दूजा साइबर खतरा ने पिछड़ा कर और वन हटावन में मदद करे है। वह लोगों व्हाट्सएप माथे दो स्तर वालों सत्यापन सक्रिय रखने री अरज की नी। अरब मौसम प्रदेश में काल बिखा छांटो तेज वेवन रासार है। मौसम विभाग रे मुजब जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग सागे शेखावाटी हल्का माई कठे कठे आवता तीन चार दिन माई जोरदार मेह बरसबारी संभावना है। इन बीच राज्य रा आतुनी हल्का माई मौसम सूखो रेवन रासार है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि लारला एक सप्ताह रुक्योड़ी बिरखा अब ओजू भैला।
1: अगले चार पांच दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। चार पांच और छह सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर जयपुर अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले तीन चार दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: कृष्ण जन्माष्टमी काल मनाई चावेला इस मौके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जनता ने बधाई और शुभकामनाएं देता थका भगवान श्री कृष्ण रा निष्काम कर्म रा संदेश ने अपनार कर्तव्य रा गिला माथा चालन बाबत कहो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी माना बधाई संदेश में कहो कि भगवान कृष्ण रो कर्म योग रो संदेश आज ही काम रो है। वह जनता प्रेम शांति और भाईचारो मजबूत करण रो संकल्प लेवन बाबत कहो। बीजे प्रदेश रा खास कृष्ण मिंद्रा माए विशेष आयोजन रख्या जावेला। राजधानी जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर माए सोमनी झांकियां सागे तड़के दर्शन रो सिलसिलो शुरू हो जावेला। ब्रज हल्का माए भरतपुर रा बाजार माए खासी रौनक नजर आ रही है। जातरु सुंदर पोशाकां सागे साज सिंगार और भोग पूजन री सामग्री री खरीदी कर रहा है। दीग जिला रा काम वन माई श्री कृष्ण जन्म आठम री तैयारियां जोरा माथा चल रही है। माणी खबर नवीस बतायो कि काल कामा उत्सव री शुरुआत फैला।
2: इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु कामवन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी विशेष झांकियां, मंगला आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
0: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हल्का माए पटाखानी बिक्री सारू अस्थायी लाइसेंस जारी करण रो काम शुरू फेंक्यो है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ब्रिजेंद्र सिंह भाटी बतायो कि दिवाली में ध्यान रखता थका ऐ लाइसेंस दिया जावेला। इन सारू 22 सितंबर ताई अर्जी दी जा सके है। लाइसेंस 12 अक्टूबर 11 नवंबर ताई लागू रहेला। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस रा राष्ट्रीय पुरस्कार और नवाजी जय विद्यार्थी आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुलाकात की। एनएसएस रा राज्य दल नायक डॉक्टर विवेक कुमार री अगुवाई माए भी ई मुलाकात रे दौरान श्री बागड़े विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रथम री सोच उ काम करण बाबत कहो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। भारत और बेल्जियम आवता पांच साल माए कारोबार दोनों करण माथे राजी किया। दोनों देशों बीच आज नई दिल्ली माए के करार माथे सही करी ची। प्रदेश 309 नगरीय निकाय माए भी बनवाड़ा चुनाव सारू 34,719 उम्मीदवार मैदान माए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास साइबर अपराधानी रोकथाम सारू बैंका ने जागरूकता कार्यक्रम चलावन बाबत कहो।

इंसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आणवाडो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर के चैनल से बोल रहे हैं। अब शाम के 7 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए एक प्यारा सा कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी हिम्मत,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा था भाई का घना घना राम राम, और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा जी आपने भी घना घना राम राम, और सुनबा वाला सभी श्रोताओं ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
6: और रामा श्यामा के साथ ही देखो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यही करे ना कि आपनो उद्देश्य छे अपना किसान भाई की जो आमदनी छे वह दुगुनी होवे, वहाँ की जो फसल छे वह सुरक्षित रहे और कम मेहनत में वहाँ बत्तो फायदो मिले। इतना जरूरी है कि समय की योजना बनार समय के साथ ही काम करना चाहिए जी। नए महीने सितंबर को शुरू हो गए थे तो काम भी नया नया हो गया, फसल में भी नया अनुमान लगाया जा रहा है भाई। हाँ इस मौसम में देखते हुए सितंबर माह में कौन सा सा मोटा काम छे जो कि काश्तकार में शुरुआत में ध्यान दाखिल करे तो वहाँ की जो उत्पादन छे फसल को वो चोखू हुए। मोटी मोटी फसलों छे सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार। बात सबसे पहले देखो थोड़ी सी करा आपा सोयाबीन की, तो सोयाबीन में ये तो काश्तकार भाई ध्यान रखे ही है, पर बात यही है भाई जहाँ क्षेत्र में बरसात कम हो रही है खासकर अपना राजस्थान में आप देख ही रहे थे तो उन्हें तो सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार सिंचाई कर ही रहे थे, पर कई एक ऐसा हल्का है जिन्हें बारिश ठीक ठाक हुई भी है या किसानों के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो वे सिंचाई करे भी है। तो यह ध्यान रखो कि सिंचाई जरूर करो अगर कमी है फसल में तो, पर पानी को जो भराव है वो फसल महीने कौन होगा देनो छे, अगर पानी को भराव हो जाने लो तो वो सीधो सीधे फसल में प्रभावित करे लो
7: जी। और देखो प्रभावित किया करे लो जहाँ कीट बीमारियां छे जो पीड़ा मोजे गर्डल बीटल सेमी लूपर ये सब जो बीमारियां छे आपने जो फसल में चलो पकड़ ले ली तो इके लिए किसान भाई ने जरूरत है कि नियमित तौर पर आपने फसल की किसान भाई निगरानी करता रहे। और दूसरी बात या कि फसल और फूल में फड़ा बनवा की टेम नमी की कमी न होवा दे क्योंकि जो भी एक फसल के उत्पादन की क्षमता पर ज्यादा प्रभाव डाले छे।
6: बिल्कुल सर, यह कि आपने समय रहता अगर कोई चीज को पतो लाग जाए भाई ये चीज की कमी या बत्ती से यो फायदो नुकसान छे वे काश्तकार भाया जिया कि आप तो जाने छो कि ई टाइम जब फसल में फूल और फलियां बन रही छे ऊ टाइम अगर पानी की नमी को सटीक मात्रा में ध्यान रखो जावे तो गुणवत्ता और उत्पादन दुनिया नहीं प्रभावित करे।

0: एके साथ साथ ही देखो सबसे जरूरी बात छे कि फसल संरक्षण जो कि ई टाइम में करनो भी बहुत जरूरी छे। बरसात में देखता हुआ मौसम में देखता हुआ कीड़ा बीमारी ज्यादा लागे छे, तो छिड़काव बुड़काव जरूर करो, फसल सुरक्षा के लिए जरूरी भी छे, पर जितो सो जरूरत है जरूरत के मुजब करो, सही तरीका से करो, सही विधि से करो और सही खरीदर नाम पर्ची को सब देकर हाँ आपकी फसल पे कितो असर कर लो और सही मात्रा को ध्यान रखना अनीता जी सबसे ज्यादा जरूरी छे।
1: बिल्कुल, ये जो छोटी छोटी बातें छे वे बहुत ज्यादा अपनी फसल पर असर डाले छे। कपास की फसल की बात करा तो फूल और टिंडा बनवा की अवस्था में भी पौधों की नियमित निगरानी करवो आपने किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी छे, क्योंकि जब लगातार किसान भाई फसल की निगरानी करता रहेगा तो फसल की किसी भी अवस्था को माने ध्यान रहेगा
0: जी। और अनीता जी जैसे आप शुरुआत में बात कर रहे थे भाई फसल संरक्षण बहुत जरूरी छे, इतना ही अवार देखो जावे तो वो कपास का मायने गुलाबी सुंडी को प्रकोप ज्यादा हो रहा है, तो निरीक्षण करो सा आपका खेत में अगर लागे कि गुलाबी सुंडी को प्रकोप छे तो जो उपचार छे उन्हें जरूर करो ताकि ई प्रकोप ने कम करो जावे और कपास से चोखो उत्पादन लियो जा सके, क्योंकि काश्तकार भाइया कपास एक नकदी फसल का रूप में काम करे छे जो कि काश्तकार भाइया की आमदनी को अनीता जी एक अच्छो
1: जी। और देखो साज भैया तो आपने अब बारिश कम ही हुई छे लेकिन फिर भी कोई जगह अगर बारिश लगातार हो रही छे तो खेत में जल निकासी को भी ध्यान रखे जिससे कि फसल को बचाव सही ढंग से हो सके। तेज हवा और बारिश के बाद पौधा के गिरवार टूटवा की स्थिति में भी किसान भाई ध्यान में रखे।
0: और देखो सा एक ही साथ साथ ही जो बाजरा मक्का और ज्वार की फसल छे उनमें भी भुट्टा बनवा को समय छे, बहुत सी जगह बुट्टा बन भी रहे छे पर कई जगह बुट्टा में कीड़ा और बीमारी लग जा रहे छे जो कि सीधा सीधा फसल का उत्पादन में प्रभावित करे छे, तो छिड़काव बुड़काव को ध्यान रखो, खरपतवार अगर छे तो हटाओ क्योंकि खरपतवार आप जो भी छिड़काव बुड़काव करो छो उन्हें अवशोषित कर लेवे छे और फसल की बढ़वार समुचित तौर से होबा कुन देवे जितने की होनी चाहिए। तो बातें तो छोटी छोटी छे पर घनी मोटी छे, जाने ध्यान में रखकर आप अपनी जो फसल छे उनको सुरक्षित उत्पादन ले सका छा
1: जी।
0: और अभी के साथ ही देखो विषय विशेषज्ञ आ गए छे स्टूडियो में, अश्विनी भाई ले आया छे बातचीत को विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण छे, तो आओ सा आपा सगला ही ध्यान लगा सुनाई बातचीत में।
1: बिल्कुल सा
2: देखो आपने बीच विशेषज्ञ पधारगा श्री भंवराराम कड़वा साहब जो छे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर के माए, जैसा आज आप जानकारी ले ला रबी फसल की बुआई के लिए अग्रिम तैयारी कहीं कहीं कर सका छा, तो सबसे पहले तो आप आपको स्वागत करा राम राम साहब।
3: राम राम साहब, राम राम साहब।
2: कड़वा साहब सबसे पहले मैं किसान भाई ने बताओ कि इस समय देखो किसानों के लिए खेता में खड़ी रबी की फसल में काय का स्थिति है के?
3: देखो किसान भाइयों जैसा आप देख रहे हो इस साल जो बारिश है वो लगभग 20-25% कम हुई है जिससे फसलों की स्थिति अच्छी नहीं है, किंतु अभी तक जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय खरीफ की जो फसलें खड़ी है वो अच्छी फसलें खड़ी है, तो आपको ध्यान रखने की चीज है कि ये जो अच्छी फसलें खड़ी है और अभी मौसम विभाग द्वारा ये भविष्यवाणी भी की जा रही है कि अगले 2-4 दिन के अंदर अच्छी बारिश होने की संभावना है, अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो ये अपने जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए संजीवनी साबित होगी और आशा करते हैं कि इससे अच्छा जो है वो उत्पादन प्राप्त होगा। अब ध्यान ये रखने की है जब अच्छी बारिश हो जाएगी तो अपन को रबी की भी अग्रिम जो तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए
2: जी,
3: क्योंकि जो बुआई का समय है रबी फसलों का वो सितंबर से शुरू होकर के आपका अक्टूबर नवंबर तक चलता है, तो इसमें अपन अग्रिम तैयारियां कर सकते हैं।
2: बिल्कुल साहब, अभी बताया कि जहाँ बारिश होगा की संभावना है तो इस समय अगर मान लो बारिश हो जाए तो अपने किसान भाई ने कुछ तैयारी करनी चाहिए?
3: देखो किसान भाइयों जो खेत पड़त पड़े हैं या जिसके अंदर आपको अगेती बुआई करनी है जिसमें मुख्य रूप से अगेती बुआई के लिए अगर देखा जाए तो अपन लोग जो है सरसों है तारामीरा है इसकी बुआई कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन को खेत की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो खेत की तैयारी के अंदर अगर बरसात हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज पलेवा करके और उसके बाद जो जिसको मारवाड़ी में कहते हैं अपन करके उसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, तो उससे जो ही टाइम आएगा मान लो 15 सितंबर के बाद के अंदर जो है सरसों तारामीरा इसकी बुआई किसान भाई आराम से कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों जैसे आपको पता है कि आजकल जो बाजार के अंदर है उसके अंदर जो सब्जी मिल रही है वो अच्छी नहीं मिलती है, अपन कहते हैं कि साहब उसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा होता है या जो दूर दूर से सब्जी आती है तो उससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो इस समय जो काश्तकार भाई अगेती रूप से जो बुआई कर सकते हैं वो है मुख्य रूप से जैसे है मूली है गाजर है पालक है मेथी है धनिया है

0: प्याज है इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो अर्ली सोइंग कास्ट कार्रवाई करना चाहते हैं उसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए भी क्या करना चाहिए कि ये जो जैसे मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ, सब्जियों के अंदर जो बीज का जो सोर्स होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए आपको जो सर्टिफाइड दुकानें होती है, जो कृषि विभाग से जो लाइसेंस होल्डर दुकानें होती है, उनसे बीज खरीदना चाहिए और बीज खरीदते समय भी उसका पक्का बिल लेना चाहिए। बिल लेकर के इसमें भी क्या होती है, सभी प्रकार की जो किस्में होती है उनका बुआई के समय के अनुसार ही किस्में होती है, तो अगेती बुआई के लिए जो अलग किस्में आती है तो उन किस्मों का चयन करके करनी चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था फूलगोभी और पत्ता गोभी, ये जो अगेती किस्म में आती है उसकी अभी पौध तैयार कर सकते हैं। पौध के लिए भी आपको काश्तकार को कम से कम 20-25 दिन चाहिए, तो अभी पौध तैयार हो जाएंगी तो 20-25 दिन बाद में उसको अपने फील्ड के अंदर उसको लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, देखो अभी आपने जो खेतीबाड़ी की बात करा तो अभी आपने खेता का मान है जो खरीफ की फसल लहरा रही है, मान लो खरीफ की फसल के बाद में रवि की फसल के लिए अपना कौन सी तैयारी अभी से करनी चाहिए?
0: देखो किसान भाइयों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो करीब करीब मेच्योरिटी पर है, वो 10-15 दिन के अंदर फसलें मेच्योर हो जाएगी। जो ही फसलें मेच्योर होती है, मेच्योर के अंदर भी क्या होता है कि एक तो होती है फिजिकल मेच्योरिटी, तो फिजिकल मेच्योरिटी के अंदर जैसे फसल पीली पड़ने लग जाती है उस समय उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर क्या है, कटाई करके फिर उसके लिए जो अपन है उसका जो भूसा वगैरह भी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में खेत की तैयारी जैसे आपने की तो उसके बाद में है गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद के अंदर गोबर की खाद या जो कंपोस्ट डाली जाती है, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति मेंटेन होती है और सरकार की भी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है और कृषि विभाग द्वारा भी प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती है, तो उसके अंदर आपको है ये जो आपका केंचुआ की खाद है, इस प्रकार की खाद डालनी चाहिए। और जिन काश्तकार भाइयों, कई काश्तकार क्या करते हैं कि ढींचा जो हरी खाद के रूप में खरीफ के अंदर क्या करते हैं काश्तकारों के लिए जमीन में जो आजकल न्यूट्रिएंट्स के लिए जैसे अपने बात करते हैं डीएपी यूरिया, उसको पारंपरिक रूप से देने के लिए और खेत की जो संरचना है उसको सुधारने के लिए ढींचा की हरी खाद की जाती है। तो जिन काश्तकार भाइयों ने ढींचा बो रखा है वो ढींचा भी जो आपका है 40-50 दिन का हो जाता है और जिसमें फूल आने लगते हैं उसमें उसको मिट्टी पलटने वाले हल चला करके उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, और उस मिट्टी में मिलाने से पहले उसमें थोड़ा यूरिया छिड़क देना चाहिए। उससे क्या होता है उसमें डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा और उसमें नमी रहेगी, तो उस नमी के आधार पर इसके अंदर वो खाद तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो समय पर अपने जो रबी की फसलें हैं उसकी भी अपन बुआई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, देखो आप जो भी फसल लिया था वो आपा या सोच लिया था साहब आपा अच्छी से अच्छी पैदावार कर सका। अब बात करा तैयारी की, तो आपने किसान भाई ने मिट्टी की तैयारी की बात करा, मिट्टी की जांच की बात करा, तो आपने मिट्टी का नमूना काय तरीके से लेना चाहिए और काय तरीके से अपनी जांच करानी चाहिए?
0: देखो राज्य सरकार द्वारा जो है मिट्टी परीक्षण के अनुसार किसान भाइयों को खाद डालने की सलाह दी जाती है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो इस समय जो है अपने खेत से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करके जो अपना संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है उसको दे देना चाहिए। अब मिट्टी का नमूना लेने की भी एक विधि होती है, ये जैसे एक खेत है जिसकी मिट्टी का उर्वरा शक्ति का समान है उसको अपने टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके आधार पर जो फसलें होती है उसके 6 इंच गहरे के अंदर भी कट खड्डा तैयार करके मिट्टी का नमूना लेते हैं, और मिट्टी का नमूना लेकर के आप कृषि पर्यवेक्षक दे दोगे तो वो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करा देगा और उसकी 10-15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो न्यूट्रिएंट्स है, नत्रजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है या अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसका उस हिसाब से दी जाता है। तो किसान भाइयों को मिट्टी की पहले जांच करा लेनी चाहिए, ये काफी फायदेमंद है और उससे जो आपकी फसल की लागत है वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही अपन खाद देंगे तो उसे कास्का भाई को काफी बड़ा फायदा होगा।
1: बिल्कुल साहब, एक फसल और आरोचक साहब, मिट्टी का जो नमूना रहेगा था वे अपने किस समय लेना चाहिए?
0: मिट्टी का नमूना जब फसल बोनी है और खेत के अंदर से जब अपन जो खरीफ फसल है या जैसे अभी बात करें तो जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कटने के बाद के अंदर समान रूप से उसके ऊपर जो परत होती है या प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं उसको हटा करके जो नेचुरल स्थिति है उसके अनुसार से नमूने संग्रहण करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, प्रमाणित बीज की व्यवस्था कई तरीके से आपने

0: भाइयों साहब जी।
1: किसान भाइयों, देखो आप जैसा कि आप जानते हो कि फसल उत्पादन में बीज की बड़ी महत्ता है, और बीज भी आजकल काफी अच्छा क्वालिटी का बीज आ रहा है। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके अंदर संकर बीज आता है तो उसको लेना चाहिए, या कुछ फसलें ऐसी होती है जिसके अंदर आपको उच्च गुणवत्ता का बीज आता है तो बीज की व्यवस्था पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे अभी पहले जो अपने देखते हैं कि जो भरतपुर संभाग है उसमें सरसों की बुआई करते हैं, तो उसके हिसाब से सरसों का जो है उन्नत प्रमाणित बीज लेना चाहिए। और खासकर वायु से निवेदन है कि बीज के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम जो सरकारी संस्था है उसके यहाँ पर भी सरसों का बहुत सारी किस्में है, उनका बहुत अच्छा अच्छा बीज मिलता है। तो काश्तकार भाइयों को सरसों का जो उन्नत बीज है वो राजस्थान राज्य बीज निगम की जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ से प्रिजर्व करके वो बीज ले सकते हैं। तो और इसके अलावा जैसे अपने बात करें चना, इस प्रकार की एक फसल है जो कम पानी के अंदर अच्छा उत्पादन दे रही है, और इससे राजस्थान को दलहन के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए भी भारत सरकार द्वारा भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो उसमें चने की किस्में का भी चयन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कौन कौन सी किस्में लेनी है इसका पहले से ही चयन करके आपके संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है उसके यहां से कर सकते हैं, या एक आपको पता है कि भारत सरकार का किसान कॉल सेंटर भी चलता है उसके आधार पर भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसान कॉल सेंटर का सबको पता है कि उसका टेलीफोन नंबर भी सब किसान भाइयों को पता होगा, 1551 है, उसमें निःशुल्क सेवा है 1551, उसके ऊपर भी इस प्रकार की जानकारी वो ले सकते हैं।
0: बिल्कुल साहब, यहाँ का किसान भाई जी सब्जी की नर्सरी लगाओ चाहे भाई, जहाँ में टमाटर हुआ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, आगे नर्सरी कब लगानी चाहिए, कितना दिन पहले लगानी चाहिए?
1: देखो जैसे पहले भी चर्चा कर रहे हैं, जो टमाटर हुआ या आपके जो है फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्च है, इनकी नर्सरी जो तैयार होने के अंदर 20 से 25 दिन लगते हैं। तो किसान भाइयों को उसी हिसाब से नर्सरी लगानी चाहिए, और नर्सरी के लिए भी क्या होता है कि इस प्रकार का स्थान का चयन करना चाहिए जो छायादार हो, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, अगर अपन खुले में लगा देंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और जो नर्सरी के लिए बेड तैयार किया जाता है वो भी थोड़ा उठा होना चाहिए जमीन से,
0: जी जी,
1: तो उससे क्या होता है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और नर्सरी के अंदर भी ये है कि नर्सरी के बेड तैयार करते हैं उसके अंदर अगर आप गर्मी कंपोस्ट खाद देंगे तो उससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, जिससे जल्दी ये आपकी ग्रोथ हो जाएगी और 20-25 दिन के बाद में ये जो है पौधे आपको खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सर, आपने किसान भाई ने सिंचाई व्यवस्था काय तरीके से करनी चाहिए?
1: देखो राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, इसमें पानी की कमी है, तो मेरा काश्तकार भाइयों से निवेदन है कि जहां तक हो सके ड्रिप, जो आजकल करीब करीब काफी किसानों ने ड्रिप का उपयोग भी शुरू कर, काफी सरकार द्वारा ड्रिप दी गई है, तो ज्यादा हो सके तो ड्रिप से सिंचाई करने चाहिए, और ड्रिप नहीं हो सके तो आज के फुहारा है, पाइपलाइन है, ये जो सिंचाई के साधन है उसको काम में लेकर के काश्तकार भाई सिंचाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साहब, कड़ा साहब एक बात और बताओ, वहां के किसान भाई रात दिन मेहनत कर फसल पहुंचे, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा समस्या ये बात की रह जाए कि वहां की फसल में कीट या रोग नहीं लग जाए, तो बिल्कुल प्रबंधन भी किसान भाई काय तरीके से कर सके?
1: देखो सरकार भी इसके बारे में चिंतित है, और जो कीट और रोग होते हैं वो उत्पादन को काफी क्षति पहुंचाते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों को हमारा निवेदन ये रहता है कि कीटनाशकों का प्रयोग जुडिशियल करना चाहिए, जब आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। आजकल बिना रसायन के भी बहुत सारे साधन है जिसके अंदर आप जानते हो गए, ये क्या नाम आपके चिपचिपा वो आता है, ट्रेप आता है, या पीला क्रोमोन ट्रेप आता है, तो इस प्रकार के जो काम लेंगे ना तो इससे क्या होता है जो कीड़े आते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है फसलों में दवाई छिड़कने के लिए ईटीए लेवल होता है, आर्थिक स्तर की अगर नीचे रहता है कीट, अगर आप देखते हैं पर यूनिट एरिया के अंदर कीट या 4-5 कीट होते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कीटनाशक का प्रयोग जब भी किया जाता है कि कीट का स्तर है या रोग का स्तर है वो ईटीएल से ऊपर हो जाता है, तो उसी समय इसका आपको कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल साहब, एक मानक किसान भाई के सामने नमी की भी समस्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो नमी को संरक्षण काय तरीके से कर सकता है?
1: देखो नमी संरक्षण के लिए क्या एक ये तरीका है कि जैसे अगर बरसात हो जाती है तो बरसात हो जाती है अगर, तो बरसात के लिए आपको क्या करना चाहिए कि बुआई करके कई काश्तकार करते भी है, जैसे कुछ एरिया के अंदर ऐसा एरिया जिसके अंदर जो बरसात के अंदर फसलें नहीं लेते हैं वो 2-4 बुआई करके जो नमी होती है उसको दबाते

0: देते हैं, हल या हेरा चला करके उसके ऊपर पाटा लगा देते हैं, जो उसमें नमी संरक्षित हो जाती है और जो ही फसल बोने की स्थिति आती है तो वो फसल बो देते हैं, तो उसके अंदर संरक्षित नमी से फसलें भी काशकार भाई ले सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, देखो साहब कोई भी अपन नई फसल लेना चाहता हो, अपन भूमि ने जैसे बताया थोड़ी देर पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए, भूमि सुधार के लिए बोए गए ढेंचा की मिट्टी की जुताई आप कई तरीके से कर सकते हैं।
0: देखो मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की थी कि ढेंचा जिन काशकार भाई ने बो रखा है उसमें ढेंचा की जमीन के अंदर आपको मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जब उसके अंदर फूल वाली स्टेज होती है तब उसको पलट देते हैं और उसमें जल्दी उसको सड़ाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें आप थोड़ा यूरिया अगर 2-3 किला यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से डाल देंगे तो वो जल्दी सड़ जाएगा और तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल साहब, कई माँ के किसान भाई फलदार पौधा की तैयारी कर रहे थे लगा रखे थे, तो बाकी देखरेख माँ का किसान भाई कई तरीका से कर सको कैसे और कौन कौन सी बातों को बाकी देखरेख में ध्यान रखना चाहिए।
0: देखो किसान भाई राजस्थान के अंदर जो फलदार पौधे हैं उनका भी बड़ा महत्व है, तो उसके लिए भी फलदार पौधों में आप जान रहे होंगे इसमें क्या होता है कि राजस्थान के अंदर आप जानते हो अनार सबसे अच्छे होते हैं, इसके अलावा पपीता आजकल हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी खेत होता है उसके अंदर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, अगर पानी खेत के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो श्वसन की क्रिया जो पौधों की जड़ों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है वो रुक जाती है, इसलिए वो पौधे मर जाते हैं, तो उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं तो खरपतवार क्या करते हैं कि जो पौधे का भोजन है वो खुद खा जाते हैं, तो समय पर खरपतवार का भी नियंत्रण चाहिए, उसके लिए जो रिकमेंडेड मात्रा में खाद और ये पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना चाहिए और जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कीट और रोग का भी नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा पौधों के अंदर क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि छोटी छोटी सी उसके अंदर कई बार क्या होता है कैंकर जैसे हैं या कुछ टहनियां सूख जाती है या कुछ पौधे का अंग सूख जाता है, तो उसको भी क्या करते हैं कटाई छटाई करनी चाहिए और जो सूखी और रोगग्रस्त जो पार्ट है पौधे का या आपस में जो रगड़ने वाले पार्ट है उस शाखा को काट करके इससे रोग आगे नहीं बढ़ता है और उसके ऊपर अपन दवाई का स्प्रे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा सिंचाई और ये जो है कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल करवा साहब, किसान भाई ने काई जानकारी संदेश दे पूछो।
0: किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इस साल जो बारिश का जो आंकड़ा है वो कम रहा है, तो बरसात की जो प्रत्येक बूंद है उसका संरक्षण करें और अभी जैसे मौसम विभाग वाले कह रहे हैं 4-5 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, तो उस बारिश के अंदर भी इस प्रकार की तैयारी करेंगे जो आपको खरीफ की खड़ी फसलें हैं उसको काट करके और उसके बाद में कम से कम पानी के अंदर ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो रबी की फसलें हैं उसकी बुआई की जा सके, इससे आपका जो धन और धान्य से किसान का खेत भरेगा और अगर भारत का किसान समृद्ध होगा तो अपना देश समृद्ध होगा।
1: किसान भाई आपने भी जानकारी दे रहे साहब भूमरा राम कड़वा साहब जो थे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर, अपना प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिया, इकलिए थको गुणगुणो धन्यवाद साहब।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए,
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी, अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लो तो पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे
3: हैं। सच है
2: बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: आशा जी
6: जी
5: देखो सा अश्विनी जी बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने विषय विशेषज्ञ से दिलवाया, तो यहाँ को तो देवा आप आगे धन्यवाद और अब एक गीत सुन लो सा।
6: बिल्कुल सा।

0: अनीता जी, गीत तो सा आप बहुत ही चोखो सुनाया और गीत के साथ ही अब स्टूडियो की खड़ी तो कह रही थी कि आज को जी को कार्यक्रम से किसान वाणियों को टाइम पूरा होते जा रहे थे, तो जावा से पहली काश्तकार वाया ने यही कहना चाहूंगा सा कि मौसम विभाग के द्वारा बताई गई जो मौसम की जानकारी है उन्हें ध्यान में रखता हूँ, यही आपका जो खेती बाड़ी का काम है वहां की आप रूपरेखा तैयार करो, क्योंकि एक पल में मौसम कद करवट बदल ले हुए पतो भी कौन रहे और इको सीधो सीधो प्रभाव पड़े आपने फसलों पर। और अब दिराव आगे आशा ने
1: और अनिता ने
0: चालान करा, राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:30 होने को ही आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से दुबई में खेले जाने वाले महिला एशियाई कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण।
1: I'll bring you ball by ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Hong Kong of the
2: कार्यक्रम हमारे प्रोग्राम। श्रोताओं कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। कभी उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हमें बहुत आगे ले जाती है, कभी उनकी डांट उस समय तो बुरी लगती है लेकिन बाद में समझ आता है कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी थी। और कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें वह करने की हिम्मत देता है जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा भी नहीं था। शुद्ध ऐसे ही लोगों में से एक है हमारे शिक्षक। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक शिक्षक की भूमिका की, शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते की, अनुशासन और

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में उमराव जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिया चले जा चले।

एमजी शिवकुमार लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। संगीतकार ए.आर. रहमान थे। इसी गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
2: थैंक यू सर। थैंक यू
1: विवेक जी। आपका जो पूरा काम है साइबर क्राइम के बारे में, हम उस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आप विजिलेंस का काम भी करते हैं?
2: सर, विजिलेंस का काम ऐसे जो हमारा रेगुलर पुलिसिंग है, रेगुलर पेट्रोलिंग हमारा होता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स आजकल ज्यादा हो रहे हैं, स्नैचिंग होता है, थेफ्ट होता है, तो स्ट्रीट पेट्रोलिंग हम बढ़ाते हैं। हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वो सारे जगह जगह पे जाके चेकिंग्स करती है, जिससे स्ट्रीट क्राइम रोकने का हमारा ज्यादा फोकस होता है। फिक्स पॉइंट्स होते हैं हमारे, हमारी व्हीकल्स घूमती है एंड हमारा कोशिश रहता है कि स्ट्रीट क्राइम कोई भी ना हो और पब्लिक में एक ऐसी फीलिंग रहे कि हम सेफ एंड सिक्योर है।
1: सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल साइबर क्राइम का निशाना लोग किस तरह से बनते हैं, उस बारे में आखिर वो कौन सी चीज है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए?
2: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइबर क्राइम के विक्टिम कोई भी होता है, उसको या तो कोई कॉल आता है साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल का, या तो कोई मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो या कोई मैसेज हो। तो पहले तो हमें यह वेरीफाई करना जरूरी है कि हमें जो भी कॉल या जो भी मैसेज आया है वो जेन्युइन है क्या। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारी आपकी हो सकती है। कोई आपको बोल रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, कोई आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल का केवाईसी अपडेट कर दो नहीं तो आपका मोबाइल नंबर आज के आज बंद हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं आप पैसे भरो नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा,
1: कॉल कुरियर वाला
2: आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। तो आने वाला कॉल या आने वाला मैसेज ये जेन्युइन है या नहीं, ये वेरीफाई करना सबसे पहला जरूरी है।
1: ये चलते हुए फोन कॉल के बीच इसको कैसे वेरीफाई करें या इससे कैसे बचें?
2: देखिए, कोई कॉल करना ये उस सामने वाले के हाथ में, कॉल रिसीव करना उस पर कितनी बात करना ये हमारे हाथ में। अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉई बोल के आपको कॉल कर रहा है तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए। आपके पास मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, आपके पास बैंक का वेबसाइट है, आप जिस बैंक में अकाउंट खोले उसके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का आपके पास नंबर होता है, आप उनको कॉल करके ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। आजकल ये जो कंसेप्ट है ना डिजिटल अरेस्ट टाइप का, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी तरीके से बाहर इंडियंस जो जॉब के लिए गए हुए हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं, बाय प्रेशर बाय हुक और क्रूक कर लेते हैं एंड उसके थ्रू उनको इस साइबर क्राइम में डाल देते हैं। अब साइबर क्राइम करने वाले लोग क्या करेंगे कि जो भी विक्टिम है उसको कॉल करने के बाद कोशिश ये उनकी रहेगी कि वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो, यो किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कोई भी ओपिनियन ना ले, इस वजह से उसको डिजिटली अरेस्ट कर दे कि नहीं आपको अभी इमीडिएटली ये वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे क्रिमिनल जो ऐसे वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के भी बैठते हैं एंड सिर्फ एक ग्लिम्स देते हैं आपको कि हाँ नहीं हम जेन्युइन है, वो बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा कॉल हमारा एसएमएस और ये जो चल रहा है वो जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। आदमी डर जाता है और वो उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। उनको ऐसा बोला जाता है कि आपने जो कुरियर किया हुआ है उसके अंदर ड्रग्स है तो आपको इमीडिएटली नार्कोटिक डिपार्टमेंट से हम बात करें और आपको इतना इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लोग डर के मारे वो जो अकाउंट देंगे उसमें पैसे दे देते हैं। उस वक्त उस आदमी को ये लगता है कि कैसे भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, बट ये जिस टाइप का फ्रॉड है अगर इसको काउंटर करना है तो लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमारे ऊपर एलिगेशन क्यों लग रहे।

0: अगर हमने कोई कुरियर भेजा ही नहीं है तो हमारे ऊपर इस तरीके, आपको पहले तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके लोकल पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करना चाहिए। जैसे अगर आप मुंबई में है तो आप 100 नंबर है, आप अदर कमिश्नरेट्स में 112 है कहीं पे, तो आप जो टोल फ्री नंबर्स है, हेल्पलाइन नंबर्स है, उन पे कॉन्टेक्ट करके वेरीफाई कीजिए कि ये जेन्यून है या नहीं है।
1: मान लीजिए किसी का कॉल आया, हमको संशय हुआ, हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, या मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया है और तब हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, क्या सचमुच वहां मदद मिलती है और किस तरह की ये मदद होती है?
0: सर, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1930।
1: जी,
0: कोई भी विक्टिम जिसके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड होता है, उसको सबसे पहली चीज करनी चाहिए, उसने 1930 पे कॉल करना चाहिए
1: और रिपोर्ट 1930
0: ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर वो नंबर बिजी आ रहा है तो आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। द मोमेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है और उसके ऊपर काम इंस्टेंट शुरू हो जाता है,
1: तुरंत
0: शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेगुलर हेल्पलाइन नंबर होता है हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी में, जैसे मुंबई में मुंबई पुलिस का 100 नंबर है, वैसे हमारे नेबरिंग सिटी जो है मीरा भाईंदर कमिश्नरेट उसमें 112 है, काफी जगहों पे 112 या 100 ही है, तो जैसे आप उस पर कॉन्टेक्ट करते हो वहां से भी आपको हेल्प मिलता है। आप ये चीज के लिए श्योर हो जाते हो कि ये जेन्युइन है या फेक है, तो वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके साथ सच में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जो इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर बन के, वो सच में है या फेक है, ये वेरीफाई करना जरूरी है, और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता है इन दो हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर।
1: अच्छा, आजकल एक चीज और बहुत देखी जा रही है विवेक जी, कि सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन हम जानते हैं कि +91 से शुरू होने वाले कॉल तो हमारे देश के भीतर से आ रहे हैं, लेकिन बहुत अनजान कोड से नंबर आते हैं, जैसे पड़ोसी देश का नंबर है +92 जो कंट्री कोड है, उसके अलावा भी बहुत अनजान कंट्री कोड से आते हैं, और जब हम गूगल करके देखते हैं तो कोई अफ्रीकन कंट्री मिलती है, कोई यूरोपियन कंट्री, अमेरिका भी मिलता है कई बार। ऐसे कॉल से क्या नुकसान हो सकता है? हमने उठा लिया, या मैसेजेस से या व्हाट्सएप कॉल से या व्हाट्सएप मैसेजेस से हमारा क्या बिगड़ सकता है?
0: जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके, वो ट्रेस ना किया जा सके इसके लिए वीआईपी कॉल का सहारा लेते हैं। अब ये वीआईपी कॉल्स करने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ये फैसिलिटीज देती है कि आप बस उनको एक नॉमिनल अमाउंट पे करो, वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर से आप व्हाट्सएप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉल्स 100% कॉल्स बाहर कंट्री से ही आ रही, वो इंडिया से भी ओरिजिनेट होती है काफी कॉल्स, एंड काफी कॉल्स राउट होके इंडिया में आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नुकसान, ये नुकसान तो कुछ होना नहीं है, वो आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए ट्रैप सेट करने का कोशिश करेगा उस कॉल को करके या उस मैसेज को करके, वो बस इसके लिए प्रिकॉशन ले रहा है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं हो, इस वजह से वो इस तरीके के नंबर्स यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि +92 यूज कर रहे, +44 यूज कर रहे, ये कर रहे वो। अब यहां तक ऐसा है कि आपको वीआईपी कॉल नॉर्मल नंबर से भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी आपको +92 +44 या अदर नंबर से आना है, वो जब आपको कॉल आ रही है यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वेरीफाई करें कि ये कॉल जो इंडिविजुअल कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये फ्रॉडस्टर ये अलग अलग नंबर से जो कॉल कर, उठाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने, आपको वो नंबर भी आप जो 1930 पे रिपोर्ट कर सकते कि इस तरीके मुझे मैसेज आ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है हमारा I4C करके सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में जो इसके ऊपर काम करता है, जो ये डेटा कलेक्ट करता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते कि किस तरीके के मैटर जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं।
1: अगर हमारे पास किसी इस तरह के नंबर से कॉल आता है तो क्या हम मैसेज करके ये सूचना दे सकते हैं किसी एजेंसी को कि भाई हमारे पास यहां से कॉल आ रहे हैं?
0: जैसे 1930 पे कॉल करके आप पोर्टल पे वो आए हुए जो मैसेजेस है उनके स्क्रीनशॉट तक अपलोड कर सकते हैं। उसी पे हमारा चक्षु करके एक पोर्टल है जहां पे स्पेसिफिकली आप नंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर से हमें कॉल आई है।
1: जिससे पोर्टल का एड्रेस दीजिए,
0: वही सेम जो हमारा cybercrime.gov.in पोर्टल है उसी से वो लिंक्ड है, उसके ऊपर एक पेज है जहां पे आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डालिए। एंड काफी ट्राई ने अब जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें स्ट्रिक्ट कर दिए है, जिस वजह से जो ये स्पैम मैसेजेस भेजे जाते थे उसके ऊपर भी काफी हद तक रोक लगी है अभी।
1: जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि और क्या क्या रूप हैं साइबर क्राइम के? जैसे हमने ये देखा कि एक कुरियर फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, वो क्या है?
0: सर, कुरियर फ्रॉड ऐसा है कि जैसे आजकल हर किसी का कोई ना कोई पार्सल कोई तो भेजता है या कोई तो आना ही होता है। तो मान लीजिए आपको कॉल आ गया कि हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं एंड आपके जो भी

पार्सल है, कुरियर आपने जो भेजा उसमें ड्रग्स मिले, तो आदमी डर जाता है। एंड वो आपको बोलते कि इमीडिएटली आप जो है हमें लाइव वीडियो कॉल पे आइए, आपको इतना इतना अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इमीडिएटली अकाउंट में भरना पड़ेगा। लोग एक्चुअल में यूनिफॉर्म में भी बैठते हैं डराने के लिए, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाएगा, आपको अरेस्ट हो सकता है। देन वो इमीडिएटली कुछ ऐसे फॉर्म आप बना देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, आपका नाम डाल के सेट फॉर्मेट होते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप करना शुरू कर दे कि आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हो चुका है, आपके अगेंस्ट ये वारंट है। तो डरा के लोगों से पैसा निकालना ये ऑब्जेक्टिव है। ये इस तरीके से भी करते हैं कि आपका ये जो नंबर है, आपके नाम से कुछ सिम कार्ड मिले हैं, ऐसे ऐसे कोई बड़ी केस हुई है जिसमें आपके नाम से जो सिम कार्ड यूज हुए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉलिंग के लिए यूज किए गए हैं, जिसमें साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है, इसमें बहुत सी, और वो कुछ

0: है जिसमें साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है, इसमें बहुत सी, और वो कुछ एक्चुअल जो केसेस होते हैं उनके न्यूज उनको भेज देते हैं रेफरेंस के लिए, और डरा के उनसे भी इस तरीके से पैसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम लोन ऐप स्कैम कहते हैं, कि लोग मोबाइल पे लोन एप्स जो रहते हैं उनके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड लोन लेते हैं छोटे मोटे अमाउंट के। अब जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं तो उसके अंदर स्पाई एप्स होते हैं जिससे आपका कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ, सारी चीजें सामने वाले के पास चली जाती है, फिर वही चीजें वायरल करेंगे ये डरा के आपसे और पैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया तो आपसे 10,000 मांगे जाते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक आपसे जितना पैसा निकाला जा सकता है निकाले, एंड बाद में आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा और एक फ्रॉड ऐसा चल रहा है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बोलते हैं, कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको कुछ रिव्यूज देने हैं, आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसे शेयर मार्केट की तरीके ऐसे इस तरीके से आपको मैसेज करते हैं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाइवर्ट किया जाता है जहां पे आपको एक्चुअल में कोई ऐप इंस्टॉल करवाते हैं जिसमें आपको दिखता है कि आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इनिशियली वो आपको थोड़ा पैसा रिक्वेस्ट देके निकालने को भी देते हैं, जैसे 5,000 इन्वेस्ट किए तो 10,000 आपने निकाले, आप खुश हो जाते हो, फिर वो अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10,000 तक लेके जाते हैं, फिर सडनली वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो लोगों के साथ ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी हो रहा है, 5-5, 10-10 लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाले हुए, तो लोग थोड़ा सा ग्रीड के चक्कर में विक्टिम बन जाते हैं। तो ये ग्रीड जो है वो मेन फोकस होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि थोड़ा सा कोई ल्यूक्रेटिव ऐसा ऑफर दो कि सामने वाले को लगे कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, यहां पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है। तो ये ग्रीड को कहीं पे रोकना जरूरी है।
1: जी, बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं विवेक जी, और यहां एक गाने की जगह बनती है, तो बताइए कि अब आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं अपने सुनने वालों के लिए?
0: अभी लेटेस्ट जो है ओ सजनी रे, लापता लेडीज का सॉन्ग है।
1: जरूर सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गाना।

ये था साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर।
1: ये क्या हो रहा है? क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा।
2: पैंट पैंट फट गई है साहब।
1: टांग तो नहीं टूटी? चल खड़ा हो। अरे ठीक है, खून निकल रहा है नाक से।
2: बहुत मारा पब्लिक लोग ने।
1: मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? इधर आ पाके निकाल। ये रहा। किसका है भाई ये बटुआ?
3: मेरा है साहब, मेरा है साहब।
1: आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था?
2: साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा।
1: बंद लीजिए साहब, ये बटुआ लीजिए अपना।
2: सही बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता हूँ।
1: चुप, एकदम चुप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना?
4: ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही गांधी लोगों ने।
5: अजय बताओ, मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया, तभी ने करेंगे हाथों।
4: ससुरा भागने लगा था हाथ छुड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के।
1: ओके ओके ओके मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
4: पुलिस स्टेशन जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा?
1: क्यों, रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें?
4: नहीं बाबा, अपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत खोटी हो गया।
1: चलो चलो जाओ, हटो, चलो जाओ,
6: मैं भी जाऊँ साहब।
1: ए तू किधर जाता है? चल थाने।
6: माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने, ये देखो सारी कमीज में खून ही खून है साहब।
1: सुन तो बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
6: साहब साहब, पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब।
1: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया?
6: सच्ची बोलता हूँ साहब, आप कसम, पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
1: आपकी झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?
6: रतन।
1: बाप का नाम?
6: जी रामचरण दास।
1: रहता किधर है?
6: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर।
1: वो मजदूर बस्ती में?
6: हाँ साहब,
1: मजदूर बस्ती में। क्या नाम बताया बाप का?
6: जी रामचरण दास।
1: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है?
6: हाँ साहब, दो साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था साहब।
1: मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं, भगत जी?
6: हाँ साहब, कोई कोई भगत जी भी बोलते हो?
1: कोई कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा, चल मेरे साथ।
6: किधर को साहब?
1: अबे चल। चल बैठ जाओ उधर।
6: साहब ये तो
1: ले, पानी पी।
6: जी साहब।
1: हाँ हाँ, पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में।
6: साहब ये तो किसी का घर है का?
1: किसी का नहीं, मेरा घर है। तू भगत जी का बेटा है इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया। हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ।
6: अच्छा साहब।
1: ये ले।
6: ये क्या साहब?
1: कमीज है और क्या, तेरी कमीज फट गई है ना, चल इसे पहन ले।
6: फटी तो पैंट भी है साहब।
1: हाँ हाँ, लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठहर, क्या क्या पजामा लेके आता हूँ।
6: आप बहुत अच्छे हैं साहब।
1: अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बे, ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पजामा पहन ले, चाय पिएगा?
6: जाने दो साहब।
1: हाँ हाँ, जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का?
6: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था।
1: था मतलब?
6: वो भाग गया साहब, जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
1: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
6: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
1: शादी हो गई उसकी?
6: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
1: वाह वाह वाह, शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदल थे। आजकल बहन कहाँ है?
6: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
1: तीसरा नंबर तेरा है
6: जी।
1: और तेरे बाद?
6: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहने हैं।
1: भाई क्या करता है?
6: कुछ नहीं साहब।
1: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठकर खाते हो। माँ, तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
6: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में।
1: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का?
6: हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को

आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: चढ़ावे में दे दिया
1: भगत जी ने।
0: हाँ साहब।
1: वाह वाह वाह, क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती हैं उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी हैं सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो है जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए, अब सिर झुका कर क्या बैठा है। उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे, उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने, सिवाय इस तस्वीर को माला लगाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परछाई को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं, बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो, सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखट के बाप की इज्जत को बाजार में उछलता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है।
0: साहब एक बात बोलूं?
1: क्या बात है?
0: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो?
1: क्यों?
0: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है।
1: क्या मतलब?
0: हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है।
1: क्या बकवास है
0: साहब, काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा।
1: तू कहना क्या चाहता है?
0: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पाकेटमार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।
1: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला फिला कर इसलिए जवान किया तुझे?
0: जवान किया? कैसा जवान किया, वो तो आपको दिखता ही है साहब, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूँ तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूँ तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप?
1: व्हाट नॉनसेंस, करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी पर खिलाने का ठेका भी ले लिया है?
0: लेकिन साहब मैं पूछता हूँ काहे को दिया जन्म, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
1: शराब, शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
0: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ साहब।
1: लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहां से गया?
0: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब, और गरीब आदमी हूं ना इसलिए होश जल्दी संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी, उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
2: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे, अरे वही बिना संतान वाले।
3: कब?
2: संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
3: फिर वही बात कह रहे होंगे।
2: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
3: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
2: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो तू देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
3: क्या मतलब?
2: अरे वो गिरधरलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे है।
3: हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह हुए है।
2: हाँ हाँ वही।
3: अच्छा क्या हुआ उसको?
2: अरे मति परस्त हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
3: मतबल वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
2: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
3: कौन सा वाला लड़का दिया है?
2: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
3: हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
2: जब ही तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगी बन जाएगी उसकी।
3: मतबल लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो

0: कुछ हुआ ही नहीं।
1: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
0: और तो और, जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
1: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
2: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूँ? एक चोर मैं क्यों हूँ? क्यों? आधा भूखा हूँ, आधा नंगा, अनपढ़ हूँ। जब यह सवाल अपने पाप से करता हूँ कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूँ साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर थार से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे? सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए। मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है। परवरिश करने में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।
1: मेरी हर खुशी

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज थे। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं अमर आरशी, बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमर आरशी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी। गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलीन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: अक्सर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
6: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
6: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
6: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
7: कितने अरमान जागे।

0: फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में। समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के

0: खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
1: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
2: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाये रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य

0: न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की

0: संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं आज की आवाज फिल्म से बोल और संगीत महेंद्र कपूर का है। आवाज महेंद्र कपूर की है, बोल हसन कलाम के।

0: वाह वाह प्रभात वाह, बहुत भाई तालियां उनके लिए, मजा आ गया।
1: अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, अनंत बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है आन मिलो सजना।

0: 13 रन बने। हांगकांग की टीम के लिए उनके पास
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, अगर तुम ना होते फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे आईना फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल है, संगीत समीर सेन का।

0: Zealander, she has struck 7 sixes today. That was the second highest.
1: बाजी फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं, गीता दत्त की आवाज में, एसडी बर्मन का संगीत।

0: निखा फिल्म से अभी आपने गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत भी आप आनंद बख्शी के बोल में ही सुनोगे, आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत आरडी बर्मन का, फिल्म है महबूबा।
1: Shuffley Verma as Mariam Bibi will have to head back to the pavilion. Nandini Sharma.

0: दिशा में गेंद को खेल दिया, पूरी तरीके से पुल नहीं था, ना ही पूरी तरीके से स्वीप था।
1: अभी आपने अदावत फिल्म से ये गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलते संगीत खयाम का। फिल्म से गीत का अगला गीत आप सुनेंगे शालीमार फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, संगीत आरडी बर्मन का, आनंद बख्शी के बोल।

महबूब की मेहंदी फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के बोल

फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपने मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। ये आकाशवाणी वासवड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

है, न सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि एक कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा था और इसी के चलते भारत ने हांगकांग को शिकस्त दी। भारत ने जब गेंदबाजी

0: पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।
2: ये लगा कि शेफाली वर्मा जो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही थी, एक ओवर में सिर्फ 4 ही रन उन्होंने दिए थे और शायद अगर आज उन्हें 1-2 ओवर्स और मिलते तो एज एन ऑलराउंडर आपका ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सामने जब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग टीम नहीं होती और ऐसे मौके पर आप जब अपने बॉलर को जो ऑलरेडी बैक से परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लेकिन अगर आप उन्हें और बॉलिंग कॉन्फिडेंस दिया जाए आने वाले मुकाबले के लिए, एंड वो अगर कॉन्फिडेंस उन हमारे मेन बॉलर्स को नहीं मिलेगा, वो उनकी लाइन लेंथ और वो उस तरीके से पकड़ के बॉल नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं लैक हमारी टीम का ही होगा। तो दैट्स वाई एक ये हो सकता है कि ये सोच के उन्होंने बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाया। एंड शेफाली वर्मा जैसे आपने बात करी ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर एक ऐसा बॉलर होता है जो कहीं जो वहां यूज किया जाता है जहां पे विकेट ना निकले, और अगर उसको अभी से ही हम ओपन करके दिखा देंगे, आने वाले हमारे क्वार्टर फाइनल्स भी होने वाले हैं एंड सेमीफाइनल फिर सब होने वाले हैं, तो उसमें वो अगर हम उस बॉलर को ओवर कर दिखा देंगे कि किस तरीके से वो बॉल कर रही है, कैसे स्किट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारी इंडियन टीम को।
3: मनोज, दुबई में जो आज मुकाबला हुआ है कई रिकॉर्ड्स बने। जब बैटिंग की बात कर रहे थे तो स्मृति के हमने रिकॉर्ड की चर्चा की, लेकिन दीप्ति शर्मा आज एक बार फिर महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गई हैं। साथ ही साथ श्री चरणी की भी बात करें तो 2026 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वो बॉलर बन गई हैं। आज उन्होंने जो विकेट ली उसको मिलाकर 30 विकेट उनके नाम हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों परफॉर्मेंस को?
4: देखिए, अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी की है, उन्होंने कोई ज्यादा प्रयोग नहीं किए। उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है दीप्ति शर्मा जब भी बॉलिंग करने आती हैं, ज्यादा स्पिन के बजाय बॉलिंग एंगल पर ज्यादा उनका जोर होता है, विविधता पर ज्यादा जोर होता है। वो उस तरह से नहीं था जैसे प्रेमा रावत को शार्प टर्न मिला था, इनका वो शार्प टर्न

0: नहीं था, लेकिन अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी करना, ऑफ स्पिन गेंदबाजी, क्रॉस सीम और जो जिस तरह से इनकी गेंदबाजी है, मुझे लगता है उसी का उन्होंने और ज्यादा विस्तार दिया है। उसका उन्हें पारितोषिक भी मिला लगातार विकेट चटकाने के तौर पर। इसी तरीके से आपने अभी जिक्र किया श्री चारने का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, भाई T20 जो रैंकिंग है ICC की, उसमें दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी है और अपनी ख्याति के अनुकूल उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया है। जैसा आपने बताया कि लगातार विकेट चटका रही हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, ये एक ऐसी प्लेयर है, हर ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। इनको टेस्ट में आप गेंदबाजी दीजिए, वनडे में दीजिए, T20 में दीजिए, अपने प्रतिभा के साथ पूरा न्याय करती हैं और सबसे अच्छी बात यह है इंटेलिजेंट बॉलर हैं और अपोनेंट की कमजोरी का फायदा उठाती हैं। जी
1: वैशाली, देखिए आज अभी हम बोलिंग क्लान की बात कर रहे हैं, दीप्ति शर्मा जैसी जब एक्सपीरियंस बोलर आपके पास होती है तो ऑब्वियसली यंगस्टर है आपके पास, क्रांति गौड़ आपकी यंगस्टर है, नंदिनी का हम देखते हैं, प्रेमा रावत का देखते हैं, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस की तरफ अपना एक रुख करते हैं, तो दीप्ति शर्मा का इस बोलिंग क्लान को लीड करना इस समय टीम इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे हम जितने भी सेटअप देखें, एशियन गेम्स है, 28 में आपका वर्ल्ड कप है, इससे पहले आपका ओलंपिक्स है, तो दीप्ति शर्मा का इस बोलिंग क्लान में करंटली होना भारतीय खेमे के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है।
2: सिर्फ दीप्ति शर्मा ही नहीं, जैसे आपने यंगस्टर्स बोले हैं उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एक अकेली दीप्ति शर्मा सिर्फ बॉलिंग में सारी विकेट्स नहीं ले सकती है, तो उसी तरीके से ये, अगर मैं बात करूं श्री चन्नी की, जैसे मनोज जी ने बताया कि श्री चन्नी ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ पे बोल डालती है और विकेट चटकाती है, वहीं मैं बोलती हूं कि प्रेमा रावत भी उतनी ही बेटर बॉलिंग करती है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग एयर में डाल के एंड जो बॉल उनका टर्न हुआ है वो अभी तक उस उतने तरीके का टर्न अभी तक देखने को नहीं मिला था जितना टर्न आज उन्होंने देखने को मिला है हमें।
3: चलते हैं दुबई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
4: फैंस टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हैव अ वर्ड। Natasha, your first outing, let's start with the positive from both bowling and batting.
5: I think, you know, we did bowl really well in phases. Smriti obviously played out of this world and sort of showed us what they're capable of, but I think the girls definitely put their best foot forward and they did their best, and we still have a lot of learnings and a lot of areas to improve on, but I thought our first 10 to 11 overs, you know, we had a little bit of the game on our hands.
4: Well, conditions were conducive for the bowlers, and you talked about how the bowling unit did well initially, but where do you think you could have done better as a unit?
5: I think just a little bit maybe of consistency of our plans and executing those, but at the same time, you know, we're playing a class opposition, and we just have to get that ability to put the ball exactly where we want it to be and make it as hard as possible for players like this.
4: And we talk about betting, obviously the potential is there, you guys are technically correct, so where do you think, which areas do you need to work on?
5: I think we just need a bit more exposure and get a little bit more confidence. You know, I've seen all of us play some pretty spectacular shots and some pretty good innings. But, you know, of course, as you're climbing up the ladder and playing teams above you, it's how do you still gain that confidence and maintain your shape and everything to still kind of play that shot against somebody who's a little bit quicker, a little bit more consistent.
4: Obviously, you talked about playing and getting more exposure against the stronger opportunities. What did you learn from the India today?
5: Oh, quite a lot, I'll be honest. The bravery, I was just talking to Harmon, the bravery which they play with is something we can definitely take away. I think, you know, of course everybody trains and they learn to play all of the shots, but their ability to just go out there and do it from ball one is probably, you know, a big learning for us, and how do we gain that confidence and bravery to go out and do the same against any opposition we play against.
4: I'll definitely be looking to finish the tournament on a high. You've got a match against Pakistan, all the best for that.
5: Thank you so much.
4: Moving on, I would now request Ms. Anjani Gaja to please step forward and present the player of the match, check and trophy, to none other than Smriti Mandhana for her brilliant 124 of 64 deliveries, hitting 14 fours and 7 sixes. Mandhana will have a word with you. Brilliant innings. Obviously, you are aware of the records you've broken today. Tell me about, if you want to dedicate this century to someone.
6: Well, I didn't have anyone in my mind who I would like to dedicate, but definitely, I mean, it's been a lot of things around here and there, and I think that I would really like to dedicate it in terms of course, to family only. But yeah.

0: इसका हमें हल ढूंढना होगा, लेकिन अभी सेमीफाइनल है, फाइनल है, इन दो मैचों में जरूर मैं समझता हूं जब श्रीलंका या संभावित कोई हमारी टीम सामने आएगी तो इसका हल मैं समझता हूं युद्ध स्तर पर ढूंढना ही होगा हमें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मुश्किलें वही की वही बनी रहें और हम वन साइडेड मुकाबले जीतकर फूलकर कुप्पा हो जाएं।
1: जी हां, अगर श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर डायल करें 0112342108 और 2342108 पर आप अपने विचार या सवाल पूछ सकते हैं।
2: वैशाली, गेंदबाजी में आज थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था क्योंकि हांगकांग जैसे नेशन की हम बात करें फुल टाइम क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन इंडिया जो साल में इतना ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, आप अक्रॉस फॉर्मेट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, WPL की सुविधा है आपके लिए अपने प्लेयर्स को इनहैंस करने के लिए, और इतने डोमिनेंट साइड होने के बाद भी एक फ्रेश साइड आती है और लगभग 17वें ओवर तक वो खेल जाते हैं, तो आज शायद बॉलिंग में थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था क्योंकि दीप्ति शर्मा पहले दो ओवर्स में दो विकेट चटका चुकी थी और तीसरा ओवर उनका जो हरमनप्रीत कौर है वो 16वें ओवर में वो लेके आई है, तो शायद उन्हें पहले ही ला के टीम को जल्दी वापस पवेलियन लौटाया जा सकता था।
3: बिल्कुल लौटाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इकोनॉमी रेट तो वहां पे बॉलर्स का सेम नहीं है, कहीं पे किसी का 1 पॉइंट कुछ इकोनॉमी है, किसी की 2 है, ये इकोनॉमी बहुत बेटर है। एंड जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर है उनको कॉन्फिडेंस देना भी एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई भी है क्योंकि श्रीचरणी प्रेमा एंड नंदिनी शर्मा जैसे कि उन्होंने पहली विकेट ली थी, स्किप बॉल करवाई और यॉर्कर दी साथ में, तो ये एक एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर जितने आप उस पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं जैसे बोलती हूँ बैटर के लिए वैसे ही मैं आज मैं बोलती हूँ कि बॉलर के लिए भी, जितना बॉलिंग आप उस पिच पे करेंगे तो आपको पिच रीडिंग करनी आ जाएगी कि बॉल कैसे पिच कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो इम्पोर्टेंट था हमारे यंगेस्ट प्लेयर्स के लिए, यंगेस्ट बॉलर के लिए। अदरवाइज क्योंकि दीप्ति शर्मा ऑलरेडी यहां पे खेल चुकी है, उनको इस पिच के बारे में आइडिया है, क्रांति गौड भी खेल चुकी है इस ग्राउंड पे, लेकिन बाकी हमारे जितने भी बॉलर्स बचते हैं चाहे वो प्रेमा हो, नंदिनी हो या शेफाली वर्मा हो, सबको इस पिच का रीड करना बहुत जरूरी था, जिस जो उन्होंने एक उनको वो टाइम दिया उनको रीड करने के लिए, उनको वो ओवर दिया एंड उसके साथ साथ एक बैटर को रीड करके बॉल डालना जो हमारी दीप्ति शर्मा कर रही थी। जैसे मनोज जी ने भी बोला कि वो लाइन टू लेंथ बॉल डाल रही थी, एक मोमेंटम वो ब्रेक नहीं करा उन्होंने, वो ब्रेक करना जरूरी था क्योंकि अगर जो ब्रेक हुआ है वो लास्ट के 15-16 ओवर के अंदर ब्रेक हुआ है, वो पहले ब्रेक हो जाता तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस और जल्दी खत्म भी हो सकता था ये मैच।
1: भारतीय महिला टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है T20 इंटरनेशनल में। सबसे बड़ी जीत भारत ने 3 जून 2018 को कुआलालंपुर में मलेशिया के अगेंस्ट हासिल की थी। 142 रन से भारत ने वो मैच जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए उस मैच में भारत ने 3 विकेट पर 169 रन बनाए थे और मलेशिया की पूरी टीम 27 रन पर आउट हो गई थी। तो आज कई रिकॉर्ड्स बने, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी मनोज, उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग, बताएं कहां से आप बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
4: सर मेरा नाम सुधांशु है और मैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूं। और सर आज की कमेंट्री बहुत अच्छी लगी
1: जी,
4: और भारतीय महिला टीम हमारी सेमीफाइनल में पहुंची है, इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। सर मेरा सवाल ये है कि पहले तो आज कृति मंदाना गलत रन आउट थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हम खेलेंगे तो कितने रन बनेंगे और कितनी जल्दी हम पाकिस्तान को आउट करेंगे? सर
1: पिछले मैच में स्मृति रन आउट हुई थी उसकी चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान के मैच की चर्चा हम आगे जरूर करेंगे मनोज, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी वो स्मृति मंदाना के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर की 10,880 रन पर वो पहुंच गई हैं, मिताली राज 10,868, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 5वें नंबर पर इस लिस्ट में है वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर, 10,007 रन है उनके।
0: देखिए जी, उनका रनों के शिखर पर पहुंचना मैं तो यही कहूंगा कि उनको कॉन्फिडेंस देगा और ज्यादा, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ठीक है विद ड्यू रिगार्ड्स टू हरमनप्रीत कौर, अगर ये सही समय है उनको मौका देने का, यानी स्मृति मानधना को अगर इस वक्त टीम की कमान सौंप दी जाए तो सोने पे सुहागा होगा। अगला वर्ल्ड कप भी आना है और उनको पूरी टीम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये वजह है, एक्सेलरेशन हो, कमजोर गेंदों को ना बख्शना और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना, एक रणनीति बनाना, क्योंकि अगर बीच मैदान में स्मृति मानधना है तो मेरे ख्याल से किसी और दूसरे को कोई और अलग से रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उनको बहुत ही अलग साबित करती हैं और माइंडसेट जो है हमारा बहुत पॉजिटिव है, जैसा भी कॉलर ने कहा, तारीफ की इनकी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस प्लेयर पर भरोसा रखो और इनको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का शायद ये सही समय है।
1: और शतकों के मामले में भी वो सबसे ऊपर चली गई हैं, 18वां शतक था उनका, मिगलैनिंग को पीछे छोड़ा, लेकिन इस लिस्ट में एक्टिव प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। लॉरा वुल्फार्ट हैं 17 शतक के साथ, वेस्टइंडीज के हेली मैथ्यूज हैं 15 शतक के साथ, और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमे भी हैं जो 14 शतक के साथ। यहां कॉम्पिटिशन मिलेगा उन्हें?
0: नहीं, कॉम्पिटिशन मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्मृति की जो अच्छी बात है, देखिए इन्होंने जब अपनी कंडीशन नहीं होती, बाहर की कंडीशन होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वहां ये उभर कर सामने आती। नॉटिंगहम का मैच याद कीजिए जहां इन्होंने 112 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जब T20 का मुकाबला हुआ था, सबका दिल जीत लिया था इन्होंने। और आज ठीक है कॉम्पोजिशन कमजोर था लेकिन स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद काफी नीची रह रही थी, और ऐसी स्थिति में आप टिकते हैं, खेलते हैं, ठीक है एक जीवनदान जरूर है 95 के स्कोर पर, थोड़ी जहां वो हड़बड़ाहट की शिकार हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें एक निर्दोष पारी और ऐसी पारी जिसने वाकई दिल जीत लिया। और ऐसा जैसे हम अक्सर सचिन के लिए कहा करते हैं, विराट के लिए कहते हैं, मैं तो कहूंगा आज जिसने ये पारी नहीं देखी उसको जरूर ये पारी का लुत्फ बाद में जरूर उठाना चाहिए, देखना चाहिए। और जो तमाम एकेडमीज में जो बच्चे सीख रहे हैं क्रिकेट में आगे जाना चाहते हैं उनको ऐसी पारियां उनको उनके लिए बिल्कुल एक टॉनिक का काम कर सकती हैं।
2: बिल्कुल, अभी मनोज जी बात कर रहे थे कि ये टॉनिक की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 137 रन्स की जो विक्ट्री है, आप सेमीफाइनल, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और 137 रन्स का जो ये विक्ट्री का मार्जिन है, कहीं ना कहीं वैशाली काफी ज्यादा अलार्मिंग नोट रहेगा बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि अभी आपको ग्रुप ए में अगला जो आपका मुकाबला है पाकिस्तान के साथ है, जब आप फाइनल में जाएंगे ग्रुप बी से भी हम देखें कहीं ना कहीं थोड़ा जो स्ट्रेंथिंग टीम लग रही है वो श्रीलंका की लग रही है, और अभी ये जो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है ये सारी टीम्स ने देखी होंगी, तो कहीं ना कहीं अब डर का माहौल होगा विमेन्स एशिया कप में भारत को लेके बाकी टीम्स का?
3: थोड़ा तो होगा, लेकिन उनको सामने वाली कैसी टीम है वो भी देखनी चाहिए हमें, क्योंकि हम आगे तो पहुंच रहे हैं लेकिन हमारे पास जो कमियां हैं उन कमियों को साथ लेके नहीं जाना है हमें, क्योंकि अगर हम उन कमियों को साथ लेके गए तो वो हमें लैग कर सकती है पीछे आने के लिए, तो हमें वो कमियां यहीं इसी मैच में छोड़ के आगे बढ़ना है और जो हमारे लैक हो रहे हैं उसको फुलफिल करना, उन पोजिशंस को फील करना है, उसके बाद ही हम आगे पहुंच सकते हैं। और जैसे अभी मैं और मनोज जी बात कर रहे थे कि थर्ड पोजीशन एंड मिडल ऑर्डर हमारे नहीं है हिटिंग शॉटर्स, तो वो हमें हमारी टीम को बहुत जरूरत है उसकी, क्योंकि जैसे आपने बात करी श्रीलंका के साथ हमारा मैच हो सकता है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी, एंड मोमेंट पे अगर हम वो प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें अभी से ढूंढ के चलना है, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान के बाद हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं तो नेक्स्ट मैच हमें किसके साथ ही मिलेगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चले तो वो ज्यादा बेटर है इंडियन टीम के लिए, वो ट्रॉफी के नजदीक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा।
1: मनोज जी, जैसा कि कॉलर ने भी इशारा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है, सवाल मेरा यह है कि क्या वो हाई वोल्टेज इंटेंसिटी अब भी मेंटेन हो रही है, क्योंकि जो स्तर है पाकिस्तानी क्रिकेट का और भारतीय टीम जिस स्तर का क्रिकेट खेल रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर दुबई में वही चिर प्रतिद्वंद्विता दिखेगी भारत पाकिस्तान की जो दशकों पुरानी रही है?
0: देखिए, जो भी कॉलर ने अभी कहा या जैसा आपने कहा आप भी समझते हैं और यहां वैशाली जी भी मौजूद हैं, आपने खुद इस बात को रियलाइज किया होगा कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला महिला क्रिकेट में होता है तो मुझे तो कई बार सब बताऊं ईमानदारी से शेर और मेमने की लड़ाई लगती है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को भुनाते रहें लेकिन कुल मिलाकर हम जहां पर जिस मुकाम पर भारतीय क्रिकेट खड़ा है जिसको सींचा है भारतीय खिलाड़ियों ने।

0: पाकिस्तान बिल्कुल शैशव अवस्था में है। और रही बात ओवरऑल क्रिकेट देखने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आते ही आप गुल्ली डंडे का भी कोई मैच करवा देंगे तो उसमें भी एक रोमांच बना रहेगा, लेकिन क्रिकेट में आसपास भी कहीं कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ एक अपवाद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम निर्विवाद रूप से चैंपियन ही रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक दो झटके दिए हैं हमें विमेन क्रिकेट में, लेकिन यही है कि कुल मिलाकर अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या अन्य कोई टीम हो। मैं तो कहूंगा एसोसिएट टीम को भी आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि पिछले मैच में उसने हमारी कलाई खोल दी थी 40 रन के अंतराल में, 40 के आसपास रन देकर 8 विकेट चटका लिए थे भारत के, तो वो एक चिंता का सबब है। और जीत हार इन टूर्नामेंट्स में, जैसे मैं हम अक्सर कह भी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है हमारी इस बारे में, कि वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। जरूरत है, जो हमने गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर, जो हमने गलतियां की हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जो हम इस बार लगातार हारने का रिकॉर्ड है हमारा, लगातार हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन वहां गलतियों को कैसे दूर करें।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज का मुकाबला जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि आने वाले मुकाबलों में हमें जरूर टफ फाइट मिल सकती है, तो अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए और जो पॉजिटिव्स हैं उसको और बेहतर करते चलिए। मनोज जी आपका, वैशाली आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं तक विशेषज्ञ राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम का, जिसमें आशा शर्मा, लीला सेठी, कपिला, त्रिलोक गुप्ता और उर्मिला शामिल थी। प्रोडक्शन टीम में सहयोग दिया माधवी तिवारी और स्वाति कपूर ने, और इस पूरे कार्यक्रम को आप तक लेकर आए हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान ने। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।